मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 96.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ

0: वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश कान के साथ।

मारुति नंदन केसरी नंदन दुख भंजन कृपा निधान संकट मोचन है भगवान हनुमान। जिनके हृदय में सिर्फ प्रभु राम है ऐसे महावीर को हमारा प्रणाम है।

0: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति के असीम श्रृंगार का प्रतीक है। आइए खो जाते हैं इस मधुर गीत के साथ इसी प्रकार की भक्ति में।
1: समाज की व्यवस्था बदले मगर मीरा का कृष्ण न बदले, कृष्ण की मीरा न बदले। आकाश पर छाए काले मेघों का आगमन मीरा के मन मयूर को नाचने पर बाध्य कर देता। बिजली चमके या बादलों में स्वर्ण रेखा दमके, मीरा तो कृष्ण बरखा में भीगने को तत्पर रहती। यही उसके प्रेम का समर्पण है और यही उसकी भक्ति का दर्पण है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे शोभा जोशी, प्रीति सागर और रतन मोहन शर्मा के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में रामधारी सिंह दिनकर के विचार।
1: जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कण सूखा हुआ, ओंट फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीग जाने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर ही बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपहास और संयम ये आत्म

हत्या के साधन नहीं हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हैं, तब भी वह पीछे को पांव ना हटाए। दूसरी सूरत यह है

0: ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के जो लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो, तो फिर असली मज़ा तो पांव बढ़ाए जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जन्मत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल के साथ देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वे अपने विचारों में ऐसा रमा हुआ है, अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पे भी मगन रहता है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी रामधारी सिंह दिनकर के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनेगा डॉ. लाल सिंह कौशल की वार्ता। शीर्षक है पशुओं से मनुष्यों को होने वाले रोग।

मुंह के छाली और बचाव इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर एस के कठारिया। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रसारण समय सुबह 7:10। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:45 पर। कलाकार हैं अर्चना वार्ष्णेय।

महान गायक किशोर कुमार पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोपहर 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा होगी मां के अमृत समान दूध की, जानेगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लांट के विषय में, ऋषि नातों में बात होगी युवा मन और आपकी भूमिका पर, साथ ही सौम्या नागर की वार्ता प्रसारित की जाएगी, शीर्षक है नवजीवन का अमृत है स्तनपान। दोपहर 1:45 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद प्रसारित किया जाएगा दोपहर 3 बजे। सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी नमस्ते योजना पर, अतुलनीय भारत में बात होगी दुधवा भाग अभ्यारण्य पर,

हेल्थ प्लस में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य पर साथी सुनेगा अनिंद सिंह की वार्ता। स्वराज सेवा और स्वाभिमान के अग्रदूत सर फिरोज शाह। ग्राम्य लोक कार्यक्रम में शाम 6 बजे चर्चा का विषय है पॉली हाउस की उपयोगिता। मंडी भाव, मौसम, लोकगीत के साथ सुनिएगा भेंटवार्ता। शीर्षक है आकाशीय बिजली से सुरक्षा। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी बाल श्रम पर। ज्ञान सागर सेहत टिप्स फिल्म संगीत के साथ सुनिएगा डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल की वार्ता। शीर्षक है प्रतिबल प्रबंधन। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी डॉक्टर गिरिराज किशोर की वार्ता। शीर्षक है बच्चों पर मत थोपिए अपनी महत्वाकांक्षा। शाम 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 10 बजे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। साथ ही रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी ईरा मुखर्जी। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार हैं रविन्द्र साठी और श्रीकांत पारगांवकर।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठी और श्रीकांत पारकावकर। संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर लाल सिंह कौशल की वार्ता। शीर्षक है पशुओं से मनुष्यों को होने वाले रोग।
1: मनुष्य व पशु का आदिकाल से ही संबंध रहा है। मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ हेतु पशु एवं पशुजन्य का प्रयोग खाद्य के रूप में, मांस दूध के रूप में, शरीर ढकने हेतु उनके चर्म ऊन बाल तथा वाहन कृषि व मनोरंजन हेतु उन्हें प्रयोग करता चला आ रहा है। इसी निकटता के कारण कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्य में फैलती हैं, जिनका बचाव आवश्यक है, जैसे एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग अथवा ऊन संबंधी रोग भी इसको कहते हैं। यह गाय बैल भैंस ऊंट घोड़े सुअर एवं भेड़ में अधिक होता है। वैसे तो ये अन्य पशुओं में भी होता है, लेकिन ऊपर वाले पशुओं में भी ये अधिक पाया जाता है। पशुओं से मनुष्य में संक्रामक रोगी के पशु के संपर्क में रहने से चमड़े के बने सामान का प्रयोग करने एवं मक्खी मच्छर के द्वारा भी यह रोग फैलता है। रोग का प्रकोप शव विच्छेदन करने वाले लोगों में, चमड़ी उतारने वाले लोगों में, ऊन काटने वाले लोगों में अधिक होता है। इससे त्वचा में गिल्टी, मवाद भरे घाव, निमोनिया, आंतों में सूजन एवं पशु की मृत्यु निश्चित है। मृत पशु को गड्ढा खोदकर गड्ढे में गहरा गाड़ देना चाहिए। टीबी या तपेदिक, इसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, जो मुख्यतः संकर नस्लीय पशुओं में अधिक होती है, वैसे भैंस भेड़ बकरी आदि में भी पाई जाती है। यह मनुष्यों में पशुओं के संपर्क में रहने एवं वायु द्वारा श्वास द्वारा एक दूसरे में फैलती है। इससे फेफड़ों में संक्रमण होता है, जिससे कि सांस में लेने में तकलीफ ज्वर बना रहता है। दूध पीते बच्चों में इसकी व्यापकता अधिक पाई जाती है, जो आंतों की झिल्लियों की गांठों जैसे लिम्फेटिक

कहते हैं में घुसकर बढ़वार करते हैं, जिससे मनुष्य में हल्का बुखार, शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, भूख न लगना आदि इसके लक्षण हैं। समय से उपचार न होने पर मृत्यु भी हो जाती है। पशु का प्रयोग करने वाले बर्तनों को चूने से साफ रखना चाहिए एवं उसके कपड़ों को जला देना चाहिए। अश्वगंधी रोग अथवा ग्लैंडर, यह रोग मुख्यतः घोड़ा गधा खच्चर में अधिक होता है और मनुष्यों में इनसे पालने वाले जानवरों में इनके संपर्क में रहने वाले जैसे कि सहीस टांगे वाले धोबी कुम्हार घुड़सवार एवं पशु चिकित्सक व पशु परीक्षण करने वाले कार्यकर्ता भी इस रोग के संपर्क में आने से ग्रसित हो जाते हैं। यह मुख्यतः श्वास द्वारा एवं मक्खियों द्वारा फैलता है। इससे बुखार, पीलिया, मितली, सरदर्द एवं पैरों व टांगों में दर्द, चेहरे व हाथों में गांठें बन जाती हैं जो मवाद भरकर फूट जाती है और रोग फैलाती है। अलग रोग या रेबीज या पागलपन, ये विषाणु से होने वाला भयानक रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से, नेवले, गीदड़, बिल्ली, बंदर के भी काटने से मनुष्य में फैलता है। यदि एक बार रोग के लक्षण प्रकट हो जाएं, तो फिर इससे बचना असंभव है। कुत्ते के काटने के 15 दिन से 1 वर्ष के भीतर कभी भी यह रोग हो सकता है। रोगी मनुष्य में बुखार, सुस्ती, सरदर्द, अत्यधिक उत्तेजना, बिना उद्देश्य के इधर उधर भागना, पानी से डरना, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण हैं। 2 से 10 दिन के अंदर मृत्यु संभव है। पशु चिकित्सक द्वारा अपने पालतू पशुओं को इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए, यही इसका बचाव है। स्पंजी रूपी मस्तिष्क विकृति रोग या पागल गाय रोग, यह गायों की एक भयानक बीमारी है जो संभवतः प्राइन प्रोटीन से होती है। इस बीमारी के कारण गाय में पागलपन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। भेड़ों में भी यह बीमारी पाई जाती है जो स्कैबी से मिलती जुलती है, पर मनुष्य में कुट्स फील्ड जैकब नाम की रोग के समान है। यह 20 से 40 वर्ष की आयु के मनुष्यों में अधपका मांस खाने से, उनके संपर्क में रहने से और कुछ गौपालकों में भी यह रोग अक्सर हो जाता है। इससे हाथ पैर पीठ में दर्द, लंगड़ाहट, मल मूत्र त्याग में परेशानी इसके मुख्य लक्षण हैं। इलाज न होने पर 3 से 6 माह में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, यह विषाणु जनित तत्काल होने वाला रोग है जो प्राय सुअरों में अत्यधिक पाया जाता है। यह घोड़े भेड़ तथा बकरी में भी होता है। मनुष्यों में रोगी के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है, जिससे बुखार आना, ठंड लगना, गले में सूजन, खांसी, नाक से पानी बहना, बार बार छींक आना एवं मनुष्य कमजोर हो जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर समय से इसका इलाज न किया गया तो मनुष्य की मृत्यु भी इसमें संभव है। ब्रुसेलोसिस, यह ब्रुसेला एबोटस नाम के जीवाणु जनित से होती है जो प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है। इससे जानवरों में ज्वर एवं गर्भपात हो जाता है। मनुष्य में इसका संक्रामक ग्रसित पशु के दूध एवं उसके श्राव के द्वारा फैलता है, जिससे शरीर में दर्द, ज्वर, जोड़ों में दर्द एवं महिलाओं में गर्भपात हो जाता है। अतः ऐसे पशु के सबको चूना डालकर कम से कम 5-6 फीट अंदर गाड़ देना चाहिए एवं महिलाओं को इससे बचाव रखना चाहिए। टिकिनोसिस, यह एक परजीवी से होने वाला भी भयंकर रोग है जिसे टिकिनोरा परजीवी मुख्य है। मुख्य रूप से यह सुअरों में, कुत्तों में, भालू में भी होता है। इसके लक्षण बाहर से प्रकट नहीं होते, किंतु यह रोग मनुष्यों के संपर्क में रहने से हो जाता है। परंतु मनुष्यों में यह परजीवी सुअर का मांस खाने से होता है, जिसके लार्वा आंतों में पहुंचकर आंतों की सूजन एवं दस्त, मांसपेशियों में दर्द, लकवा जैसी भयंकर बीमारी पैदा करते हैं। समय पर इलाज न होने पर

0: इससे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। टेलीरेमिया, यह बीमारी ऊंट, भेड़, बकरी में बहुत पाई जाती है और इनको पालने वाले पशुपालक इनके संपर्क में रहने अथवा इनका मांस खाने से उनमें यह बीमारी फैलती है, जिससे मनुष्यों में उल्टी, दस्त, बुखार फैलता है। अगर समय से इसका इलाज न किया गया तो मनुष्य की मृत्यु भी निश्चित है। इसके अतिरिक्त पशुओं से मनुष्य में फैलने वाले एवं दूध एवं मांस का प्रयोग करने वाले रोग निम्न प्रकार और भी हैं, जैसे पास्चुलोसिस, इससे जोड़ों में दर्द, बुखार पैदा होता है और गांठें पड़ जाती हैं। कैलिबैसिलोसिस, ये बच्चों में दस्त, बुखार, डायरिया पैदा करता है। अगर समय पर इलाज न हो तो छोटे बच्चों की इसमें मृत्यु निश्चित है। स्ट्रेप्टोकोकल, बुखार, गले में दर्द एवं सूजन पैदा करता है तथा स्टेफाइलोकोकस और आंखों में, कान, नाक में संक्रमण पैदा करता है। अगर समय से इलाज न किया गया तो इसमें भी मनुष्य की मृत्यु निश्चित है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लाल सिंह कौशल की वार्ता। शीर्षक था पशुओं से मनुष्यों को होने वाले रोग। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

0: सिंहः भाजपादलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबाद स्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव संपत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय, नवोन्मेषाय, सहयोगाय, निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठ नीति निर्मातारः, व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति संभाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तम वर्षस्य राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम, मेघालय, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोल लें और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले एक दो दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विश्वास आता है वे अपने डर और उलझनों को बेहतर समझ पाते हैं। इसी तरह किशोरों और युवाओं के लिए भी एक सशक्त अभ्यास।
2: गुड मॉर्निंग, This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The National Democratic Alliance, NDA, parliamentary party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. The Rajya Sabha also passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. Supreme Court has clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIRs registered against protesters involved in the recent student protests at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. A three-judge bench led by Chief Justice Suryakant explained that its 28th of July order permitting the prosecution of protesters with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. The top court was hearing pleas alleging excessive police action against students who

0: participated in protests at Jantar Mantar on the 20th of July and at other places across the country over the NEET examination paper leak issue. U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Speaking at the Oval Office, Trump said the U.S. was prepared to launch a major attack on Iran, but delayed the action after receiving calls from Saudi Arabia, UAE, Qatar, and Iran to continue discussions.
1: We're going to hit them very hard yesterday, harder than any attack, I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called, got calls from numerous people.
0: The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Secretary, Department of Personnel and Training, Rachna Shah will inaugurate the meeting. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर एस के कठारिया की वार्ता। शीर्षक है मुंह के छाले और बचाव।
3: मुंह में सफेद एवं लाल रंग के छाले होते हैं। यदि मुंह में कोई छाला 15 दिन से अधिक रहता और ठीक नहीं होता है, खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुंह में सफेद लाल रंग के छालों के प्रमुख कारण हैं तंबाकू, पान मसाला, सुपारी आदि का सेवन, धूम्रपान, चाहे वह सिगरेट, बीड़ी, चिलम या हुक्का हो, खाने में मसालों का अत्यधिक इस्तेमाल करना, विशेष रूप से मिर्च का, टूटे नुकीले दांत जिससे रगड़ खाने की वजह से जीभ एवं गालों में घाव होते रहते हैं। जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं उनके मुंह में भी छाले होने की संभावना अधिक रहती है। शारीरिक दुर्बलता, जो लोग संतुलित आहार नहीं लेते हैं तथा जिनके भोजन में प्रोटीन विटामिन की कमी होती है उनके मुंह में छाले अधिक होते हैं, ऐसे छाले प्रायः लाल रंग के होते हैं। शारीरिक बीमारियां, जिन लोगों को वायरल बुखार होता है उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे छाले प्रायः लाल रंग के होते हैं तथा बुखार ठीक होने के थोड़े समय बाद ठीक हो जाते हैं। एड्स की बीमारी में भी मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे छाले लाल भूरे रंग के होते हैं, इनका आकार गोल होता है। जो लोग लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहते हैं, ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके मुंह में सफ़ेद लाल रंग के छाले पड़ने लगते हैं, जो ठीक भी होते रहते हैं तथा दोबारा हो जाते हैं। हर्पीस, मिजल, मम्स आदि वायरस के संक्रमण के कारण गालों तथा जीभ के ऊपर छोटे छोटे गोल रंग के छाले हो जाते हैं। इन छालों के साथ सामान्यतया बुखार भी आता है। कुछ लोग अल्प समय के लिए तनाव में होते हैं, जैसे कि छात्र परीक्षा के पहले, ऐसे लोगों के मुंह में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जिसको एप्थस अल्सर कहते हैं। ऐसे छाले सामान्यतः 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को दवाइयों आदि से एलर्जी होती है, इन लोगों के मुंह में भी छाले पड़ते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से छाले खतरनाक हैं तथा कौन से छाले खतरनाक नहीं होते हैं। जो छाले छोटे गोल आकार के लाल रंग के होते हैं तथा सामान्यतः 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, ऐसे छाले खतरनाक नहीं होते हैं। चिकित्सक से मिलकर आवश्यक उपचार कराया जा सकता है, लेकिन छाले चकत्ते बड़े आकार के सफ़ेद रंग के, भूरे या सफ़ेद लाल रंग के होते हैं तथा 15 दिन के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, ऐसे छाले खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो

0: छाले चकत्ते सफेद रंग के होते हैं तथा मुंह की चमड़ी मोटी होकर उभर आती है तथा इनको रगड़ने से भी गायब नहीं होती है। इनको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इस प्रकार के छाले तंबाकू, तंबाकू से बने पदार्थ, पान मसाला आदि के सेवन तथा नुकीले दांतों के कारण बनने वाले घाव के कारण होते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य छाला है जो सफ़ेद लाल रंग का होता है, जो लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहने के कारण होता है। इसको लाइकन प्लेनस कहते हैं। यह छाला बीच बीच में ठीक होता रहता है तथा दोबारा हो जाता है। सफ़ेद भूरे रंग के छालों को कैंसर पूर्व अवस्थाएं भी कहते हैं। ऐसे छाले जो काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं, उनमें लगभग 1 से 3% तक कैंसर में बदलने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि मुंह में सफ़ेद एवं लाल रंग के छालों का उपचार कैसे किया जाता है। लाल रंग के गोल छाले सामान्यतः 1 सप्ताह में उपचार से ठीक हो जाते हैं। यदि मुंह का किसी भी प्रकार का छाला, चाहे वो लाल रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो या मिश्रित रंग का हो, जो उपचार के 15 दिन बाद तक ठीक नहीं होता है, खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे छालों की तुरंत जांच एवं उपचार कराना चाहिए। छाले के एक हिस्से को काटकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि छाला खतरनाक है या नहीं। जो छाले दवा से ठीक नहीं होते हैं, उनको ऑपरेशन कर ठीक किया जाता है। सफ़ेद लाल रंग के छालों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम शराब, पान, तंबाकू, धूम्रपान, पान मसाला, सुपारी आदि का सेवन न करें। खाने में मसाले का प्रयोग कम करें। यदि कोई टूटा हुआ नुकीला दांत या नकली दांत है जो कि ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, उसको तत्काल ठीक कराएं। संतुलित आहार जिसमें हरी सब्जियां, फल आदि हों का सेवन करें। दांतों की सफाई ब्रश एवं पेस्ट से ही करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के कठारिया की वार्ता। शीर्षक था मुंह के छाले और बचाव।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा की जाए।
1: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए

0: सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार एक से डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
2: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
1: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक कल पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
3: ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में कल से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के NSO प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन JSP 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। इस अवसर पर सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉ सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ देश प्रगति के पथ पर है।

0: बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री है, इस गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता था। नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता था, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है।
1: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में कल आगरा के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आज इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में निकलने वाले ऐतिहासिक जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चेहल्लुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा

0: आज इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में निकलने वाले ऐतिहासिक जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चेहल्लुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

आसपास कार्यक्रम सुनने वाली हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आसपास मौसम के बदलते हुए मिजाज के साथ। जी हां, मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। सोमवार को दोपहर में बारिश हुई। अब मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। दोपहर में शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई। इसके कुछ समय के बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई। सोमवार को आगरा का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

और लाल दाने हो रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञों ने कुछ खास उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे मरीजों को खुले व दूषित स्थानों पर बनने वाली सामग्री खाने से बचना चाहिए, बच्चों को खिलाने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह मांजें साफ कर लें, बुखार होने पर खुद को क्वारंटाइन कर आराम करें, कटे गले फल और रेफ्रिजरेटर में रखे बासी भोजन को खाने से बचें, गले में खराश होने पर गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर गरारे करें।

बदलते मौसम ने जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं बदलते मौसम से बच्चों में तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी और गले में खराश की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उमस और पसीने से फंगल इन्फेक्शन, खुजली, जलन, चकत्ते

जन सुनवाई IGRS पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण की जुलाई 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई। जिले की 6 तहसीलों में SDM एतमादपुर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिले में पहला स्थान हासिल किया है।

सिकंदरा क्षेत्र में यथार्थ हॉस्पिटल के सामने पानी की 16 इंच की पाइपलाइन खुदाई के दौरान फट गई। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम भूमिगत केबल डालने के लिए यह खुदाई करा रहा था। अब मंगलवार सुबह सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी, जगदीशपुरा, कैलाशपुरी, मदियाकटरा, पचंगनगर आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जलकल विभाग के अनुसार सिकंदरा के पास हाईवे किनारे ड्रिलिंग के दौरान 16 इंच व्यास की पाइपलाइन फट गई। इसकी मरम्मत कराई जा रही है। इस वजह से सिकंदरा वाटर बॉक्स से पोषित कई इलाकों में सुबह पानी का संकट गहरा सकता है। यदि रात में ही लाइन ठीक हो गई हो तो जलाशय और ओवरहेड टैंक भर दिए जाएंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती मामले में रिक्त पदों पर अपीलार्थियों को नियुक्ति देने और समायोजित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया। ये अपीलें कृष्ण कुमार और कई अन्य लोगों की थी।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर अगले महीने भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा के तहत सहायक अभियंता के 111 पदों का अधियाचन भी मिला है। कृषि सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के 40 से अधिक पदों की सूचना भी आयोग को मिली है। पशुधन अधिकारी के 174 पदों पर भर्ती इसी माह प्रस्तावित है। होम्योपैथिक विभाग में प्राध्यापक के 65, यूनानी विभाग में प्राध्यापक के 7 और आयुर्वेद में प्राध्यापक के 28 पदों पर इसी महीने भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 80 रिक्त पदों की सूचना भी आयोग को मिली है। खेल निदेशालय में क्रीड़ा अधिकारी के 25 और पुलिस विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के 43 पदों पर भी जल्द विज्ञापन जारी होगा। कार्यक्रम आसपास को श्रोताओं हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता का पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया। दोनों में 3-3 अंकों के 90 प्रश्न विषय से संबंधित और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। इस प्रकार कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता में 40 अंकों का साक्षात्कार भी होगा। खास बात यह है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित 4-4 अंकों के 125-125 प्रश्न पूछे जाते थे। चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं टीजीटी पीजीटी के अधिकांश विषयों के पाठ्यक्रम में कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों के मत संस्कृत विषय में कुछ संशोधन जरूर हुए हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग ने सोमवार को इस साल के 50 भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार के कार्यक्रम जारी किए हैं। इनमें से 28 भर्ती परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, शेष 22 में 12 परीक्षाएं 11,769 पदों के लिए होंगी और 10 भर्तियों के साक्षात्कार होंगे। आयोग के अध्यक्ष की मंजूरी के बाद परीक्षा नियंत्रक ने कार्यक्रम जारी किया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है। आयोग प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 9 अगस्त को 10 से 12 बजे तक आयोजित कराएगा। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को 10 से 12 बजे तक होगी। अनुदेशक फिटर, अनुदेशक ड्राफ्टमैन व अनुदेशक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस के पद के लिए साक्षात्कार अगस्त में प्रस्तावित किया गया है। आशुलिपि की आशुलेखन व टाइपिंग परीक्षा 1 सितंबर, आबकारी सिपाही की परीक्षा 20 सितंबर को प्रस्तावित है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की परीक्षा 20 सितंबर को, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित की गई है। अनुदेशक मैकेनिक व अनुदेशक टर्नर पद का साक्षात्कार सितंबर में प्रस्तावित है। अनुदेशक मशीनिस्ट पद के लिए साक्षात्कार अक्टूबर में प्रस्तावित है। प्लाटून कमांडर

ब्लॉक ऑर्गेनाइजर परीक्षा 22 नवंबर को 10 से 12 बजे और हवलदार प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 22 नवंबर को 3 से 5 बजे तक होगी। वहीं गन्ना पर्यवेक्षक व मुहर्रर परीक्षा 29 नवंबर को होगी। लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार व विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक की परीक्षा 20 दिसंबर को कराई जाएगी।

सालों तक दीक्षा ग्रहण करने का सफर, मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा, परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देना और फिर दीक्षांत के मंच पर पहुंचना। सोमवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 92वें दीक्षांत समारोह में मेधाओं का स्वर्णिम सम्मान किया गया। विभिन्न पाठ्यक्रमों विषयों में श्रेष्ठ साबित हुए छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया। वहीं शोध में नए कीर्तिमान स्थापित कर पीएचडी की उपाधि करने वालों को भी दीक्षोपदेश मिला। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की गई। दीक्षांत समारोह में कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। शोध नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय देश की सीमाओं के आगे बढ़कर कार्य कर रहा है। एआई के क्षेत्र में 12 नए स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। साथ ही श्रीलंका के साथ पाली प्राकृत ट्रांसलेशन के लिए एमओयू किया गया है। स्वच्छ वायु प्रोजेक्ट के माध्यम से शोध व प्लेसमेंट को नई दिशा मिली है। कार्यक्रम आसपास को श्रोता हम आगे भी जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

आसपास कार्यक्रम में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आइए अब सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं।

पहली सूचना के अनुसार रानी पत्नी मुन्ना उम्र 36 वर्ष निवासी भीमनगर नई आबादी थाना जगदीशपुरा आगरा ये दिनांक 16 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका कद औसत रंग सांवला इकहरा बदन चेहरा लंबा इनका मुख सामान्य से थोड़ा सा तिरछा व आंखें सामान्य से तिरछेपन पे हैं। गुमशुदगी के दौरान ये हरी साड़ी नीला ब्लाउज पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर नई आबादी थाना जगदीशपुरा आगरा पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार रूबी कटारा पत्नी उमाकांत उम्र 35 वर्ष निवासी 13/132 पाक टोला थाना ताजगंज आगरा। इनका कद 5 फुट 2 इंच रंग गेहुआ है। आंखें व बाल काले हैं। ये घर से बाजार के लिए कुछ सामान लेने कहीं थी, उसके बाद से वापस नहीं आई। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना ताजगंज पर सूचित कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये गुमशुदगी के दौरान गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी।

अन्य सूचना के अनुसार आशु पत्नी गोपाल सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी इनायतपुर थाना इरादत नगर आगरा ये दिनांक 25 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका कद लगभग 5 फुट है, रंग गोरा, चेहरा गोल, बाल सामान्य काले। गुमशुदगी के दौरान ये काली फूलदार साड़ी और हवाई क्रीम कलर की चप्पल पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना इरादत नगर आगरा पर सूचित करें।

अंतिम सूचना के अनुसार विष्णु पुत्र लक्ष्मीकांत उपाध्याय उम्र 18 वर्ष निवासी एचपी पेट्रोल पंप के सामने राजपुर चुंकी शमशाबाद रोड थाना सदर बाजार

आगरा, ये दिनांक 5 मई 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, एक गहरा बदन। गुमशुदगी के दौरान ये आगरा कॉलेज का ड्रेस कोड पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर बाजार आगरा पर सूचित करें। इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं और आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत है समाचार प्रभात।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में

0: विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण

0: ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जाँच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियों में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति।

0: विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. U.S. President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अंडरलाइंड दैट टैलेंट्स आर होन्ड एंड रिफाइंड थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड डेडिकेशन। शेयरिंग अ संस्कृत कोट, मिस्टर मोदी नोटेड दैट टुडे द यूथ ऑफ द कंट्री आर इम्बाइबिंग दीज वेरी क्वालिटीज एंड इल्यूमिनेटिंग इंडियाज नेम अक्रॉस द वर्ल्ड। The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting held virtually in June. More from our correspondent.
4: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, enhancing transparency and accountability in governance. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के उहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस दो रोजा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निजाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।

0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आजाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी गई थी का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्जाम हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत ऐसे हालात और तरीक़ेकार के लिए एक जाब्ता मुरतब करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि पुलिस की मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकती कमेटी कायम करने की तजवीज पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 2 पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से इमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद, गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेवल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कुन दावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को ममानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क और इस तरह की दीगर अशिया शामिल हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की गलो झील को भारत का 101वां रामसर मकाम करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने इस पेशरफ्त को हयातियाती तनवु के तहफ़ आबी वसाइल और मौसमियाती तहफ़ नीज पायदार जरिए माश के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरकी हिमालय में वाकई ये साफ शफाफ मीठे पानी की झील हयातियाती तनवु का एक अहम मरकज है और ये कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाकई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत के दौरान अहम मादनियात, कानकनी, तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा और तालीम के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद उसत देने पर इत्तेफाक किया। ये बातचीत उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सईदूफ के भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे के दौरान हुई जिन्होंने वजीर खारजा डॉक्टर AJ से मुलाकात की। उज्बेकिस्तान के वफद का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उज्बेकिस्तान भारत के वसी हमसाया खित्ते का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से कायम तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पिछले बरसों में बाहमी ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं और अब इनका दायरा तामीरात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम समेत मुतअद्दी शोबों तक फैल चुका है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक अब कानकनी के शोबे बिलखसूस अहम मादनियात और नायाब जमीनी मादनियात में बाहमी तआवुन को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $1 अरब की 2 तरफा तजारत का जिक्र करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान इकतसादी तबादले में नुमाया इजाफा होगा। डॉक्टर जयशंकर ने 2026 में भारत की ब्रिक्स सदारत के दौरान भारत की इकदामात की हिमायत पर उज्बेकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 2027 से 2029 की मुद्दत के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की सरबराही के लिए उज्बेकिस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत का भी इजहार किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज और कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसकी वजह से आसाम के कई जिले, खासतौर पर वो इलाके जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से मुत्तसिल हैं, मुतासिर हो सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसमियात के

0: महकमे के मुताबिक शदीद बारिश से आसाम के कछार, दीमा हसाव, मगरबी कर्बी ओंगलांग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिले मुतासिर हो सकते हैं। आईएमडी ने आसाम की सरहद से मुतसिल नागालैंड के कई जिलों में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बायस आसाम के जोरहाट और गोलाघाट अजला भी मुतासिर हो सकते हैं। आसाम की कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली अथॉरिटी ने मुतालिका जिलों के लोगों से अपील की है कि वो तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हालात पर कड़ी नजर रखें। उधर सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद इमदादी कैंपों में मुकीम ज्यादातर अफराद अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। ताहम शिवसागर जिले में अब भी तकरीबन 11,000 अफराद राहती कैंपों में मुकीम हैं। कल सैलाब से मजीद दो हलाकतों की इत्तला के बाद रियासत में सैलाब से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 87 हो गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ओडिशा में बड़े दरियाओं और मुआविन नदियों में पानी उतरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में लगातार बेहतरी आ रही है। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए के इब्तदाई इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार मामूल की तरफ आ रही है। हीराकुड डैम के हुकाम ने मजीद 4 फाटक बंद कर दिए हैं और अब सैलाब का पानी 13 फाटकों के जरिए रफ्तार रफ्तार छोड़ा जा रहा है। बालेश्वर, भद्रक और जासपुर जिलों में राहत बचाव और बाजाबादकारी का काम जोरों शोर से जारी है, जहां लोगों को दुश्वारियों का सामना है। सैलाब का पानी उतरने के साथ ही कई जिलों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो नुकसान का शुरुआती जायजा लेने के बाद फौरी माली इमदाद फराहम करें। बुनियादी ढांचे और इमलाक को होने वाले नुकसान के तफसीली जायजे के बाद जामे पैकेज का ऐलान किया जाएगा। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इधर केरलम में 14 में से 12 जिलों में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: केरलम में तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर रियासत के बाकिया सभी जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में 353 इमदादी कैंप काम कर रहे हैं, जहां 13,496 अफराद ने पनाह ले रखी है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 56 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कोई 500 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 16 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 5 अफराद अब भी लापता बताए गए हैं। इधर मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल से बारिश का जोर कम होने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाज़ हिस्सों में भी औसत से लेकर तेज बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मंसूबा बंद हमला उस वक्त मौखर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सिफारतकारी जारी रखने की अपील की। जनूबी कोरिया के शहर आसन में सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। ये टूर्नामेंट इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सबकी निगाहें 17 साल तन्वी शर्मा पर होंगी, जो ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने 3 रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए जिमनी चुनाव के नतायज के ऐलान को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि बिहार में बांकीपुर से प्रशांत किशोर, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस जबकि गुजरात की मांझल सीट से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को सफे अव्वल पर शाया किया है कि उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम में फौजी और सिविलियन अहलकारों के दरमियान ताउन बेहद जरूरी है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले बिल को मंजूरी दी। ये बिल कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और CEO मार्क ज़करबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। NDA पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के

0: खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

समीर का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम आई मिलन की रात। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है दामिनी।

0: फिल्मी गीतों का सिलसिला श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में।

चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार एस टी बर्मन। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है सरगम। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

0: आभार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अन्न प्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत है जिले की हलचल।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
3: जनपद सुल्तानपुर में जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई और खरीफ की फसलों को राहत मिली, लेकिन पूरे मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से 3 अगस्त के हिसाब से जिले में अब भी वर्षा सामान्य से लगभग 1/4 कम दर्ज की गई है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती तो धान सहित अन्य खरीफ की फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के निर्णय का जिले के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती किसानी में सहारा देती है और यह फैसला किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिले के लोहरा मऊ भगवानपुर के किसान श्रीनाथ भार्गव ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है ये हम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इनसे।
3: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले में कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी व उत्पादन वृद्धि के संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया,
5: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें जो भी धनराशि दी जाती है उससे वो किसान भाई अपने जो कृषि निवेश है उनको खरीद करके जो प्रति उनके खेत पड़े रह जाते थे उसमें फिर से खेती कर सकेंगे और इस प्रकार जिले के किसान आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका उन्नयन हो सकेगा।
3: श्रावण मास शुरू होते ही कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख राजमार्गों और कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतत निगरानी और पेट्रोलिंग कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया,
6: जितने दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुपात में उपलब्ध जो हमारी फोर्स है उसको लगाया गया है। प्रयास पूरा है कि किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो।
3: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जुलाई 2026 की IGRS मासिक रैंकिंग में सुल्तानपुर पुलिस ने 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा शिकायतकर्ताओं से मिले संतोषजनक फीडबैक के आधार पर यह उपलब्धि हासिल हुई है। शासन ने शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए सुल्तानपुर पुलिस को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 में जिले में 3 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1223 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 20 जुलाई को 477, 21 जुलाई को 539 तथा 31 जुलाई को बल्दी राय ब्लॉक में 207 जोड़ों का विवाह कराया गया। बल्दी राय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 205 हिंदू एवं 2 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। योजना के तहत 9 विवाहित जोड़ों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता एवं गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने इसे सामाजिक समरसता और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देने की महत्वपूर्ण पहल बताया। वन विभाग ने सुल्तानपुर जिले की 979 ग्राम पंचायतों को अगले 4 वर्षों में हरित ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत सदर, कादीपुर, जयसिंहपुर और लम्भुआ रेंज में पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, शीशम, सागौन, आम और अमरूद जैसे पर्यावरण संरक्षण वाले पौधे लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि वर्ष 2030 तक जिले के 15% क्षेत्र को हरित आवरण से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में कृषि, पंचायती राज समेत अन्य विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य हरियाली बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
2: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
7: मुजफ्फरनगर जिला इस समय हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो रहा है। हर द्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों कांवड़िए जनपद से प्रतिदिन अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िया अपने गाँव और कस्बों के शिवालयों में पवित्र सावन माह में जलाभिषेक करते हैं। आगामी 11

0: अगस्त यानी महाशिवरात्रि तक मुजफ्फरनगर जिला पूरी तरह शिव भक्त कावड़ियों की सेवा में डूबा रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के सभी मुख्य मार्गों पर कावड़ियों के लिए कावड़ सेवा शिविर बने हैं। इन शिविरों में हजारों लोग शिव भक्तों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। शिविरों में शिव भक्तों के लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 4 अगस्त से सभी मुख्य मार्गों पर वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे और यह सभी मार्ग कावड़ियों के हवाले हो जाएंगे। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के शिव चौक पर ATS तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। जिन मुख्य मार्गों से शिव भक्त कावड़ निकलते हैं उन सभी मार्गों पर 4 अगस्त से आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। DGP राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरठ जोन के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कावड़ यात्रा को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु अथवा आम नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या व्यवधान का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों को के अधिकारियों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ चांदमिया और सलमान मुजफ्फरनगर जनपद के अंति गांव निवासी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सलमान और दानिश उर्फ चांदमिया दोनों दोस्त हैं और इनमें से सलमान जहां दिल्ली में रहकर फर्नीचर का काम करता है तो वहीं दानिश उर्फ चांदमिया सोलर पैनल लगाने का काम करता है। सिविल लाइन थाने में SSI अरविंद शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सीधे सिविल लाइन थाने के भीतर हुई। रिश्वत लेने के तुरंत बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना सिकेड़ा ले गई, जहां आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। मुजफ्फरनगर जनपद स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक माह में 3 अलग अलग मामलों में 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। लूट के बाद हत्या के एक मामले में 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा 4 अभियुक्तों अजीत, अनिल, सुनील और सूरज को फांसी की सजा सुनाते हुए सभी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तिताई इलाके के मांडी गांव में 16 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश में हुए बहुचर्चित राजबीर सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व प्रधान सहित 2 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को दुर्लभ और दुर्लभतम मानते हुए पूर्व प्रधान प्रमोद और सहदेव उर्फ पप्पू को फांसी की सजा सुनाई। मुजफ्फरनगर के भुगोना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में कच्चा मकान गिरने से एक पिता और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। भारी बारिश के बीच मकान गिरने से 52 वर्षीय पिता इस्लामुद्दीन, बेटा जिशान 8 माह, आहत 2 साल, बेटी अल्फिसा 5 साल और रुखसान तकरीबन 12 साल की JCB की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर जिले में जुलाई माह के प्रारंभ में हुई लगातार बारिश के चलते गंगा नदी, काली नदी और हिंडन नदी में कई दिन तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के सभी उपाय किए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीटर वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 होने को हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्म से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र ने और फिल्म का नाम है राज तिलक।

राज तिलक इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त और फिल्म का नाम है गंगा की लहरें।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था चित्रगुप्त ने और फिल्म का नाम था गंगा की लहरी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं, संगीत ओपी नैयर का दिया हुआ।

तुम जो चाहो नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले, तुम जो चाहो नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले, पहले हर...

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना जीएम दुर्रानी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम था हम सब चोर हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार दत्ताराम और फिल्म का नाम है कैदी।

कैदी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल के थे हसरत जयपुरी ने, संगीत दत्ताराम का। और इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:45 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के हमारे गायक कलाकार हैं अर्चना वार्ष्णेय।

अर्चना वार्षिणी के सुर में भी आप आनंद ले रहे थे लोक संगीत का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र

प्यार की कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आरजी बर्मन। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आरजी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसके बोल लिखे हैं हर्ष जयपुरी ने। संगीत शंकर जयकिशन का दिया हुआ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार और स्वर मोहम्मद रफी के।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही

0: लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

साथी फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। शब्दशा मज्जू सुल्तानपुरी की थी, धुन बनाई थी नौशाद ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गोविंद मुनिस, संगीतकार

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन और फिल्म का नाम है कामचोर।

कामशूर फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर का गाया राग सिंध भैरवी में ख्याल गायन।

सजनवा तुम क्या जानो प्रीत, ये ठुमरी जो राग सिंध भैरवी में गाई गई थी अभी आपने सुनी। गायक कलाकार थे पंडित अजय पोहनकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का राग बिलासखानी तोड़ी में ख्याल गायन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कल्पना कीजिए एक ऐसा कलाकार जिसने कभी संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उसकी आवाज इतनी जादुई थी कि आज उनके दुनिया छोड़ने के बाद, दशकों बीतने के बाद भी हर उम्र का व्यक्ति उनके गीत गुनगुनाता है। एक ऐसा इंसान जो अभिनेता भी था, गायक भी था, संगीतकार भी था, निर्माता भी, निर्देशक भी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा कलाकार जिसकी तुलना आज तक किसी से की ही नहीं जा सकती। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। जब भी रेडियो पर या कहीं भी जिंदगी एक सफर है सुहाना।

ना पल पल दिल के पास, ओ मेरे दिल के चैन, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, एक लड़की भीगी भागी सी, या चला जाता हूं किसी की धुन में, जैसे गीत बजते हैं तो दिल अपने आप कह उठता है कि ये आवाज सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार की हो सकती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे उस महान कलाकार की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनका संघर्ष, सफलता, प्रेम, परिवार, उनकी विचित्र आदतें, उनके सुपरहिट गीत, उनके जीवन के अनसुने किस्से और वो कारण जिसकी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बहुमुखी कलाकार माना जाता है। पर ये जानने से पहले सुनते हैं उनका ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बहुमुखी कलाकार किशोर कुमार की। 4 अगस्त यानी आज का ही दिन सन 1929 मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया में किशोर कुमार के नाम से अमर हो जाएगा। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक प्रसिद्ध वकील थे और माता गौरी देवी धार्मिक और स्नेही स्वभाव की थीं। घर में कला का माहौल था। बड़े भाई अशोक कुमार पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। बाद में छोटे भाई अनूप कुमार भी फिल्मों में आए, लेकिन बचपन से ही सबसे अलग थे किशोर। उन्हें किताबों से ज्यादा प्रकृति पसंद थी। वे पेड़ों से बातें करते थे, अजीब अजीब आवाजें निकालते थे, जानवरों की

आवाज की नकल करते थे, घंटों अकेले गुनगुनाते रहते थे। यही आदतें आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। किशोर कुमार महान गायक केएल सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे घंटों उनके गीत सुनते और बिल्कुल उसी अंदाज में गाने की कोशिश भी करते। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने कभी किसी गुरु से संगीत सीखा ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी गुरु थी उनकी जिज्ञासा और अभ्यास। यही कारण था कि उनकी गायकी में एक अलग ही ताजगी थी। बड़े भाई अशोक कुमार उस समय फिल्मों के बड़े सितारे थे। उनके बुलाने पर किशोर मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई पहुंचकर उन्हें जल्द ही समझ आ गया था कि फिल्मी दुनिया में पहचान बनाना आसान बात नहीं है। वे गायक बनना चाहते थे, लेकिन निर्माता उन्हें अभिनेता बनाना चाहते थे। काफी समय तक उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए। उन्होंने अभिनय किया, लेकिन उनका मन माइक्रोफोन के पीछे था। आगे की कहानी भी जानेंगे, पर सुनते हैं अभी ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं किशोर दा के बारे में। 1946 में उन्होंने फिल्म शिकारी से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्मों में उन्हें काम मिला, लेकिन कोई खास पहचान नहीं बन सकी। इधर गायकी में भी उन्हें लगातार सफलता नहीं मिल पा रही थी। उस दौर में मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायक छाए हुए थे। लोग कहते थे ये लड़का बहुत अलग गाता है, लेकिन यही अंदाज उन्हें आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। संगीतकार एसडी बर्मन ने किशोर कुमार की प्रतिभा को सबसे पहले गंभीरता से पहचाना। उन्होंने कहा कि आवाज किसी की नकल नहीं करती, इसकी अपनी अलग पहचान है। यहीं से किशोर कुमार के जीवन की दिशा बदलने लगी। 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसका गीत अभी आपने सुना, इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने तीनों भाई अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार एक साथ दिखाई दिए। फिल्म की कॉमेडी और गीतों ने लोगों का दिल जीत लिया। आज भी इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिकल फिल्मों में गिना जाता है। 1969 फिल्म आराधना जब रिलीज हुई, राजेश खन्ना स्क्रीन पर थे और पीछे से गूंज रही थी किशोर कुमार की आवाज, मेरे सपनों की रानी। पूरा देश झूम उठा श्रोताओं, और फिर आया रूप तेरा मस्ताना। इस गीत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और यहीं से उनका स्वर्णिम दौर शुरू हुआ।

श्रोताओं, कहा जाता है कि यदि स्क्रीन पर राजेश खन्ना थे तो दर्शकों को लगता था कि उनकी आवाज सिर्फ किशोर कुमार की ही हो सकती है। दोनों की जोड़ी ने दर्जनों सुपरहिट गीत दिए, ये शाम मस्तानी, ओ मेरे दिल के चैन, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, मेरे नैना सावन भादों। इन गीतों ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। जब 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हुआ, तब भी सबसे अधिक आवाज किशोर कुमार की ही सुनाई दी। खई के पान बनारस वाला, रिमझिम गिरे सावन, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, रोते हुए आते हैं सब, सारा जमाना, हर गीत सुपरहिट। यॉडलिंग का जादू, क्या आप जानते हैं कि भारतीय फिल्मों में यॉडलिंग शैली को लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा श्रेय किशोर कुमार को दिया जाता है। उनकी आवाज अचानक ऊंचाई पर जाती और फिर सामान्य हो जाती, ये शैली उनकी पहचान बन गई। फिल्म हाफ टिकट देखिए, या पड़ोसन, या झुमरू, उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी नई पीढ़ी को हंसा देती है। वे अभिनय नहीं करते थे, वे जिंदगी जीते थे।

श्रोतो, 1975 में देश में आपातकाल लगा। उस समय सरकार ने एक कार्यक्रम में गाने का अनुरोध किया और किशोर कुमार ने भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ समय तक सरकारी प्रसारण माध्यमों पर उनके गीतों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ऐसे में भी जनता का प्यार कम नहीं हुआ। किशोर कुमार बेहद अलग स्वभाव के थे। वे अपने घर के पेड़ों को नाम देकर उनसे बातें करते थे, घर के बाहर मजेदार चेतावनी वाले बोर्ड लगाते थे, रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक नई धुन या नया अंदाज जोड़ देते थे। निर्माता उनसे जितना परेशान होते उतना ही प्रभावित भी वो कर देते थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार 8 बार जीता। उन्होंने हजारों गीत गाए, हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, असमिया और अन्य भाषाओं में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। जीवन के अंतिम वर्षों में वे अक्सर कहा करते थे कि मैं खंडवा वापस जाना चाहता हूं। उन्हें अपने जन्म स्थान से गहरा लगाव था। 13 अक्टूबर 1987 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 58 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन सच तो यह है कि कलाकार कभी नहीं जाते, वे अपनी कला में जीवित रहते हैं। आज भी रेडियो पर सबसे अधिक बजने वाले गायकों में उनका नाम शामिल है। नई पीढ़ी उनके गीतों पर रील्स बनाती है, संगीत सीखने वाले छात्र उनकी गायकी का अध्ययन करते हैं और करोड़ों लोग हर दिन उनके गीत सुनकर मुस्कुराते हैं। किशोर कुमार हमें सिखाते हैं, अपनी मौलिकता पर विश्वास रखिए, दूसरों की नकल मत कीजिए, सफलता देर से मिले तो भी मेहनत मत छोड़िए, दिल से किया गया हर काम हमेशा अमर होता है। श्रोताओं, किशोर कुमार सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, बल्कि भारतीय संगीत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज में प्रेम था, दर्द था, शरारत थी, जीवन था और उम्मीद थी। आज उनकी जयंती पर हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम का अंत करते हैं उनके बेहद ही खूबसूरत गीत से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार समाप्त करने की अपने रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम। 11:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सुबह से रिमझिम बारिश की, जो कि बारिश की फुहारें लगातार धरती को भिगो रही हैं

कहीं छतों पर गिरती बूंदों की मधुर आवाज सुनाई दे रही है, कहीं पेड़ों की पत्तियां नहाकर और भी हरी भरी दिखाई दे रही हैं, तो कहीं मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को एक अनोखी शांति का एहसास करा रही है। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक, हरियाली और नई ऊर्जा लेकर आता है। बच्चे बारिश की बूंदों में मस्ती करना चाहते हैं, किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और प्रकृति जैसे एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। लेकिन यही बारिश हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो यही बारिश हमारे लिए जीवनदायिनी बनेगी, लेकिन यदि हमारे आसपास गंदगी होगी, नालियां जाम होंगी, जगह जगह कचरा फैला होगा, तो यही पानी अनेक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज का हमारा विषय है स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन और बरसात के मौसम में सावधानियां। श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन क्या

बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज का हमारा विषय है स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन और बरसात के मौसम में सावधानियां। श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छे अस्पतालों से, अच्छी दवाइयों से, या फिर महंगे इलाज से? नहीं, स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है स्वच्छ पर्यावरण से। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस मिट्टी में अन्न उगता है और जिस वातावरण में हम रहते हैं, यदि वही दूषित हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य सही रहना लगभग असंभव सा हो जाता है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं है दोस्तों, इसमें हमारी हवा, जल, भूमि, वन, नदियां, पशु पक्षी और जीव जंतु, हम सभी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति और मनुष्य का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। यदि प्रकृति स्वस्थ है तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन यदि प्रकृति बीमार हो जाएगी तो उसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। प्रिय दोस्तों, आज दुनिया जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है उसमें पर्यावरण प्रदूषण भी एक अहम भाग निभाता है। तेजी से बढ़ते शहर, कटते हुए जंगल, बढ़ते वाहन, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, नदियों में बहता कचरा और अनियोजित विकास, इन सब ने हमारे पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाया है। इस विषय पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी बरसात का आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आजकल जो हमने सुविधाएं ली हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन्होंने हमें सुविधा तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। यही कारण है कि आज कभी भी वर्षा होती है, कभी अत्यधिक गर्मी पड़ती है, कभी अचानक बाढ़ आती है और कभी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं। श्रोताओं, आज सुबह से हो रही बारिश हमें एक सुंदर सीख भी देती है। बारिश की हर बूंद धरती पर समान रूप से गिरती है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने अमीर का घर है या गरीब का। वे सबको जीवन देती है, लेकिन उसका लाभ वही उठा पाता है जिसने प्रकृति का सम्मान किया है। जहां पेड़ हैं, जहां स्वच्छ जल स्रोत हैं, जहां नालियां हैं वो साफ हैं, वहां बारिश खुशियां लेकर आती है। लेकिन जहां गंदगी है, वहां यही बारिश परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए यदि हम सचमुच एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। कहते हैं, बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से की जाती है। यदि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखे, यदि हर परिवार कचरे को डस्टबिन में डाले, यदि हर मोहल्ला सप्ताह में एक दिन सफाई अभियान चलाए, तो पूरा शहर बदल सकता है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का

संदेश है। आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें स्वच्छ वातावरण ही नहीं दे पाए तो हमारी सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए बच्चों को बचपन से ही छोटी छोटी बातें सिखाइए। कचरा डस्टबिन में डालना है, पानी व्यर्थ नहीं बहाना है, पेड़ पौधों की देखभाल करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना। यही संस्कार आगे चलकर एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करते हैं और स्वास्थ्य भारत का नींव का निर्माण करते हैं। श्रोताओं, बरसात का मौसम वृक्षारोपण का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यदि आज हम एक पौधा लगाते हैं तो आने वाले वर्षों में वही पौधा हमें स्वच्छ हवा, छाया, फल, पक्षियों का आश्रय और पर्यावरण का संतुलन देगा। याद रखिए, पेड़ हमारे लिए केवल ऑक्सीजन नहीं बनाते बल्कि वे वर्षा को संतुलित रखने, मिट्टी को सुरक्षित रखने और पृथ्वी को जीवंत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विषय पर और भी बातें करेंगे, अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जैसे कि हमने बात की, पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में जो अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और सुकून तो लाता है, लेकिन यदि हम थोड़ी सी लापरवाही कर दें तो यही मौसम कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन जाता है। बरसात की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो प्रकृति खिल उठती है, खेतों में नई उम्मीदें जन्म लेती हैं, पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं और वातावरण में एक नई ताजगी भर जाती है। लेकिन इसी मौसम में यदि कहीं पानी रुक जाए, नालियां जाम हो जाए या कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए तो मच्छरों और कीटाणुओं के पनपने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा और अनुकूल वातावरण भी बन जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष बरसात के दिनों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, टाइफाइड जैसी पेट से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश बीमारियों से थोड़ी सी सावधानी रखकर बचा भी जा सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने दें। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल बड़े गड्ढों में ही पानी भरने से समस्या होती है, जबकि मच्छर एक छोटी सी प्लेट, गमले, पुराने टायर, कूलर, बाल्टिया, नारियल के खोल में भी पानी जमा होने पर अपने अंडे दे सकते हैं। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन घर के हर कोने को जांचें और देखें कि जहां भी पानी जमा हो उसे तुरंत खाली कर दें। श्रोताओं, बरसात के मौसम में पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उबलता हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। बाहर जाते समय अपने साथ पानी की बोतल ले जानी चाहिए। दूषित पानी कई बीमारियों को जन्म दे देता है। और अब बात करते हैं भोजन की। बरसात के मौसम में हमारी पाचन शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, इसलिए जितना संभव हो घर का ताजा और गर्म भोजन करना चाहिए। सड़क किनारे खुले में रखे खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल या लंबे समय से रखा भोजन खाने से बचना चाहिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही प्रयोग करें। यदि बारिश में भीग जाएं तो घर पहुंचकर गीले कपड़े तुरंत बदल लें। देर तक गीले कपड़ों में रहने से सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। बच्चों को बारिश में खेलने से पूरी तरह रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वे भीग जाएं तो उन्हें तुरंत साफ और सूखे कपड़े पहनाएं और कुछ गर्म पीने के लिए दें। बरसात का मौसम केवल शरीर ही नहीं मन को भी प्रभावित करता है। लगातार बादल, कम धूप और उमस के कारण कुछ लोगों को आलस या थकान भी महसूस होती है। ऐसे में हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम और कुछ समय खुली हवा में बिताना लाभदायक हो सकता है। यदि बारिश रुक जाए तो मौसम और आपको मौसम भी अनुकूल लग रहा हो तो हरियाली के बीच थोड़ी देर टहलना भी मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा है। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, स्वच्छ जल का संरक्षण। बारिश का पानी प्रकृति का अमूल्य उपहार है दोस्तों। यदि हम इसे सही ढंग से संजोएं तो भविष्य में पानी की कमी से बहुत हद तक बचा भी जा सकता है। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग केवल बड़े संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, आज कई घरों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। यदि आपके घर या मोहल्ले में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो उसके बारे में जरूर सोचिए। आज बचाया जल आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन सकता है। श्रोताओं, बरसात के मौसम में बिजली से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। यदि तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमक रही हो तो खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खम्भों के पास खड़े होने से बचना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है तो हम मोबाइल पे बाहर बात करने के लिए निकल जाते हैं रिमझिम बारिश में, लेकिन ये बिजली को आकर्षित कर सकती है। जो मोबाइल की रेंजेस होती हैं वो बिजली को आकर्षित कर सकती हैं और बिजली गिर सकती है। तो जब बारिश हो रही हो तो

तो बाहर जाके कभी भी मोबाइल पे बात ना करें, घर के अंदर ही रहें। सड़क पर चलते समय जल भराव वाली क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखें। कई बार पानी के नीचे गड्ढे या खुले मेन होल दिखाई देते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक स्वस्थ समाज वही होता है जहां लोग केवल अपने घर की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले और पूरे शहर की चिंता करते हैं। यदि आपको कहीं भी गंदगी दिखाई दे तो उसे अनदेखा ना करें। यदि संभव हो तो स्वयं सफाई करें या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दें। याद रखिए, शिकायत करना आसान है लेकिन समाधान का हिस्सा बनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस बरसात में हम केवल छाता लेकर घर से बाहर ना निकलें बल्कि अपने साथ जागरूकता भी लेकर निकलें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक स्वस्थ समाज की पहचान होता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर से आइए अपने मन से एक प्रश्न पूछें। क्या हम अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं, या उन्हें एक स्वच्छ, संरक्षित और हरा भरा भविष्य भी देना चाहते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो इसकी शुरुआत आज और अभी से करनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत बड़ा काम है जिसे केवल सरकारें या बड़े संगठन ही कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। सोचिए, यदि हर परिवार अपने घर के सामने सफाई रखे, यदि हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी ले, यदि हर नागरिक प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करे, यदि हर मोहल्ला मिलकर वर्ष में कुछ पेड़ लगाए, तो हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश कितना सुंदर बन सकता है। प्रकृति हमें हर दिन बहुत कुछ देती है। हवा बिना कोई मूल्य लिए, पानी बिना कोई शर्त रखे, धूप बिना किसी भेदभाव के और वर्षा बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन क्या हमने कभी प्रकृति को उतना ही लौटाने का प्रयास किया है? आज की ये बारिश हमें केवल भीगने का अवसर नहीं दे रही, बल्कि हमें एक संदेश दे रही है, जितना लोगे उतना लौटाइए भी। प्रिय श्रोताओं, आज सुबह से हो रही इस रिमझिम बारिश ने शायद आपके घर की छत को भी भिगोया होगा। पेड़ों की पत्तियां चमक उठी होंगी, कहीं बच्चे खिड़की से बारिश देख रहे होंगे, कहीं किसान के चेहरे पर मुस्कान आई होगी और कहीं किसी माँ ने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए होंगे। यही तो भारत की खूबसूरती है, जहां मौसम केवल बदलता नहीं बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोल देता है। लेकिन इसी खूबसूरत मौसम में हमें ये भी याद रखना है कि हमारी छोटी सी लापरवाही किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यदि हम सड़क पर प्लास्टिक फेंक देंगे तो वही नाली को जाम करेगा, यदि नाली जाम होगी तो पानी भरेगा, यदि पानी भरेगा तो मच्छर पनपेंगे, और यदि मच्छर पनपेंगे तो पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है, यानी एक छोटी सी गलती का असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह एक छोटी सी अच्छी आदत भी बदलाव ला सकती है। डस्टबिन का उपयोग करना, किसी पौधे को पानी देना, पानी की एक एक बूंद बचाना, बिजली का अनावश्यक प्रयोग न करना, कपड़े का थैला साथ रखना, ये भी छोटी बातें मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। श्रोता, हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा प्रकृति को पूजनीय माना है। हमने नदियों को माँ कहा, धरती को माता कहा, वृक्षों को देवतुल्य माना, तुलसी, पीपल, बरगद और नीम जैसे वृक्षों का सम्मान किया, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। आज विज्ञान भी वही बात कर रहा है जो हमारी संस्कृति सदियों से करती आई है और सिखाती आई है। इसलिए आधुनिक जीवन के भागदौड़ में अपनी परंपराओं से मिलने वाले इन अमूल्य संदेशों को कभी मत भूलिए। बरसात का मौसम हमें धैर्य भी सिखाता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तभी अंकुर बनता है और वृक्ष बनने में वर्षों साल लगते हैं। इसी तरह अच्छे समाज का निर्माण भी एक दिन में नहीं होता, इसके लिए लगातार प्रयास, जागरूकता और सामूहिक भागीदारी की भी आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखूंगा, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और पानी की एक एक बूंद का सम्मान करूंगा या करूंगी, मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचूंगी, मैं वर्ष में कम से कम एक पौधा जरूर लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने

एक आधार है। अंत में प्रकृति को समर्पित चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। धरती मुस्कुराए, हरियाली गाए, बूंद बूंद जीवन का संदेश सुनाए, आओ मिलकर ऐसा कल बनाएं, स्वच्छ पर्यावरण से स्वस्थ भारत को सजाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने की आज्ञा लेना चाहूंगी आप सभी की रेडियो साथी प्राची जैन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी,
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी,
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया।

0: जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
0: जी
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
0: जी
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी
0: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी
0: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी
0: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी
0: एआई हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
0: बिल्कुल
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है,
0: जी
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महान

0: औरत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
2: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे। आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
3: सर मैं इशिता। मैं हूँ चेताली।
4: मैं शुभेंदु।
5: और मेरा नाम है इंदु।
6: और मैं सोमेश।
2: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
3: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
2: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
4: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
6: सर फिर क्या होता है?
2: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
6: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
2: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे
0: उठो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
7: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
7: उल्टा?
2: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
6: फिर क्या हुआ?
2: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
6: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
7: जी सर।
3: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।

0: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
1: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
2: देखो इतना बड़ा पेड़।
3: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
4: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
6: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
1: माइक्रोस्कोप?
6: हाँ, अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
0: जी सर।
6: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
6: शाबाश।
1: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
5: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
6: हाँ आओ आओ आओ,
1: मुझे भी देखना है।
6: देखो क्या दिखाई दिया?
1: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
1: पाइप?
6: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
5: अच्छा, तो ये बात है।
6: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
6: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
4: नहीं सर।
6: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
4: जी सर।
6: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
0: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
6: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
6: हाँ
1: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
6: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
0: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
6: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
1: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
6: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
4: बहुत अच्छी।
6: अब से एक काम जरूर करना।
4: क्या सर?
6: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना तो उसे बोलना
4: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
6: शाबाश।
7: तो साथियों अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं

0: तो हम हैं।
1: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।
2: हम्म।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम को फिल्म जो जीता वही सिकंदर में। गीत के बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था जतिन ललित का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने। संगीत है नदीम श्रवण का और गीत है समीर का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म माचिस का ये गीत, जिसे गाया था हरिहरन और सुरेश वाडेकर ने। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था विशाल का। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और मधुश्री के स्वर में फिल्म जोधा अकबर का ये गीत। जावेद अख्तर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सांवरिया का ये गीत और आवाज थी श्रेया घोषाल की। गीत लिखा था नुसरत बदर ने और संगीत था मोंटी का। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले

भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: There's another opposition of disrupting the proceedings of the monsoon session of Parliament. Briefing the media in New Delhi this morning, BJP national spokesperson Sambit Patra said the opposition had not participated in discussions on important bills, including the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026, which were passed successfully in the Houses. The National Democratic Alliance Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, was held at Parliament House today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, also attended the alliance meeting. Tamil Nadu opposition leader Udayanidhi Stalin was taken into police custody for questioning over a controversial remark. The development follows Udayanidhi's controversial speech at a DMK farmers' protest yesterday concerning the Kaveri water dispute. The case was based on the complaint given by a woman in Thanjavur that his speech contained indecent words against women. Several protesting DMK workers were arrested from Udayanidhi's house in Nilankarai. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall today over parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim. The weather system is likely to impact several districts of Assam. The IMD has also issued a yellow warning for most districts of Nagaland bordering Assam, which could impact Charaideo, Sivasagar, Jorhat and Golaghat districts. According to the Met Department, parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Kerala, Mahi, Himachal Pradesh, Odisha and Uttar Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In Kerala, an orange alert of heavy rainfall has been declared in 12 or 14 districts for today. In badminton, Korea Masters, India's Tushar Suvir has been knocked out of the tournament after losing his qualifying match against Japan's Shogo Ogawa today. In women's doubles, Priya Konjanbang and Shruti Mishra, and in the men's doubles, Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurti Roy will be in action today. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note during the afternoon session today. The Sensex dipped 239 points to 78,400, while the Nifty slipped 281 points to 24,493 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी. उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन है. आज योगी हुकूमत माली साल 2026-27 का जिमनी बजट ऐवान में पेश करेगी. अपोजिशन असेंबली इंतखाबात से कबल इस आखिरी मानसून इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है. इससे पहले आज सुबह वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनकी रिहायशगाह पर काबीना की एक मीटिंग हुई, जिसमें नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और दीगर वुजरा ने शिरकत की. इस मीटिंग में रियासत की खुशहाली और अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ अहम मौजूआत पर वसी तबादला ख्याल किया गया. भारत की सरबराही में ब्रिक्स ममालिक के कौमी शुमारियाती दफातर NSO के सरबराहान की दो रोज़ा मीटिंग आज भी लखनऊ में जारी है. कल से शुरू हुई इस मीटिंग में 350 से ज़ायद मंदूबीन बशमूल ब्रिक्स के रुकन ममालिक के कौमी शुमारियात के सरबराहान, पॉलिसी साज, माहिर तालीम, थिंक टैंक्स, सिविल सोसाइटी की तंजीमें और तकनीकी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं. इजलास का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान मेयार के आदाद व शुमार, डेटा की जिद्दत और तआवुन को मजबूत बनाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और दीगर रियासती हुकूमतों में तलबा के पेपर लीक एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई से मुतालिक मुकदमात में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने का तरीका अपना सकती है.
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. समाचार कक्ष से अतहर सईद.
1: लोकसभा ने कल सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का बिल पास कर दिया. वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम

0: अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि यह बिल अदालती इस्लाहात के जारी अमल में अहम तब्दीली लाएगा।
1: ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: मरकजी वजीर ममलकत बराए खजाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में मुनक्किद खुद कफील भारत करारदाद मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में रियासत और मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की सदारत में कल आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 92वां कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें 64 होनहार तलबा को 88 मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जमहूरियत को सिर्फ एक निज़ाम हुक्मरानी नहीं समझते थे, बल्कि जिंदगी का एक बुनियादी उसूल समझते थे, जहां हर फर्द का वक़ार सबसे मुकद्दम है। इमाम हुसैन का चहलुम आज सोगवार माहौल में मनाया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने तारीखी चहलुम जुलूस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। ये जुलूस सुबह तकरीबन 11 बजे विक्टोरिया स्ट्रीट पर वाक़े नाजिम साहब के इमाम बाड़े से शुरू होकर राजाजीपुरम के तालकटोरा में करबला की तरफ रवाना हुआ। जुलूस से कबल मजलिस का इनेकाद किया गया। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमन और कानून बबलू कुमार ने बताया कि शहर के मगरबी जोन में वाक़ पुराना लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में तकसीम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ACP सतह के अफसरान के साथ 2000 से ज्यादा पुलिस अहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। PAC के 10 कंपनियां और एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है। रियासत के कई अजला में इस वक्त मानसून जोरों पर है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में कल रात से शुरू होने वाली बारिश अब भी जारी है। सुबह तक बारिश जारी रहने की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने वालों और सफर करने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमे मौसमियात ने आज तकरीबन पूरा दिन मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं बहनों का अपना कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर। वैसे बहनों, एक बात तो सच है कि आपका और हमारा ये जो रिश्ता है वो इतना प्यारा है कि एक फिल्मी गीत तुमने पुकारा और हम चले आए की तरह सप्ताह के पूरे 5 दिन ठीक उसी समय हमें आपसे मिलने आना होता है। बहनों, मित्रता के इस खूबसूरत रिश्ते के अलावा जीवन की यात्रा में हमें ईश्वर द्वारा बहुत से रिश्ते और संबंध मिलते हैं, जिनमें सबसे अनमोल और गहरा रिश्ता एक माँ और उसके बच्चे का होता है। दरअसल बहनों, बाकी दूसरे रिश्तों से इस रिश्ते की उम्र 9 महीने अधिक जो होती है। जी हाँ बहनों, गर्भधारण से लेकर प्रसव होने तक एक महिला का शारीरिक और मानसिक जुड़ाव जो अपनी संतान के साथ बनता है, उसका आधार बेहद मजबूत होता है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या कुछ और, कि जन्म लेने के तुरंत बाद जैसे ही शिशु भूख से तड़प कर रोता है, वैसे ही उसकी माँ का आंचल अमृत समान दूध से भर जाता है। बहनों, नवजात के लिए यह दूध अमृत तुल्य होता है, जिसमें उसके लिए ज़रूरी सभी पौष्टिक तत्व शामिल होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, इसलिए कम से कम शुरुआत के 6 महीने की उम्र तक

शिशु को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। बहनों, जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चे को मिलना ही चाहिए। माँ के दूध को बच्चे के लिए अमृत कहे जाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि इसमें मौजूद सभी पोषक तत्वों का शिशु द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषण और उपयोग, पाचन संबंधी स्वास्थ्य के लिए बेहतर, शिशु के मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र आँखों के विकास के लिए माँ के दूध में सभी पोषक तत्वों का सही संतुलन, साथ ही इसमें कई रोग प्रतिरोधक तत्व जो कई तरह के गंभीर संक्रमणों से शिशु का बचाव करते हैं। बहनों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसे संगठनों की सहयोग से दुनिया भर में माँ के दूध का महत्व और इसके माँ और बालक दोनों के लिए स्वास्थ्य लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। बहनों, माँ और उसके शिशु का पवित्र बंधन दुनिया के सभी रिश्तों बंधनों से मजबूत होता है।

0: आइए बहनों, अब सुनते हैं सौम्या नागर की वार्ता। नव जीवन का अमृत है स्तनपान।
1: नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी विषय पर वार्ता। नवजीवन का अमृत है स्तनपान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिशु के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी दवा, सुरक्षा कवच और पोषण क्या है? जी हाँ, माँ का दूध यानी स्तनपान। स्तनपान सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संबंध, एक संरक्षण चक्र और एक स्वस्थ जीवन की नींव है, यानी माँ का दूध। यही तो है नवजीवन का अमृत। WHO और यूनिसेफ के अनुसार यदि सभी नवजातों को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए, तो हर साल लगभग 8 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है। माँ का दूध शिशु को देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषण के सभी तत्व, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, संक्रमण से बचाव, मानसिक और शारीरिक विकास। माँ का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और कई गंभीर बीमारियों से रक्षा करता है। और सबसे खास बात, ये 100% प्राकृतिक, सुरक्षित और मुफ्त है। क्या आप जानती हैं कि स्तनपान माँ के स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है? ये प्रसव के बाद गर्भाशय को जल्दी संकुचित करता है। बच्चों को स्तनपान कराने से माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। बच्चे को स्तनपान कराने से माताओं में स्तन कैंसर और डिम ग्रंथि ओवेरियन कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ये समय और पैसे की भी बचत करता है और बच्चे के लिए एक सुविधाजनक तथा हमेशा उपलब्ध रहने वाला भोजन का स्रोत उपलब्ध कराता है। स्तनपान कराने वाली माताओं की प्रसवोत्तर अवसाद यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की संभावना घटती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि देखें तो स्तनपान गरीब और अमीर दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे बोतल या फॉर्मूला दूध की निर्भरता कम होती है, जो कई बार साफ सफाई की कमी से बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। स्तनपान से परिवारों का खर्च बचता है और देश को भी स्वास्थ्य सेवाओं का भार कम पड़ता है। समुदाय इसके लिए समाज में एक सकारात्मक तथा उत्साहजनक वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर बच्चे को स्तनपान कराने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि माताएं सुविधाजनक तरीके से स्तनपान करा सकें। लेकिन आज भी कई जगह स्तनपान को लेकर झिझक, अज्ञानता और भ्रम है। कुछ माताएं सोचती हैं कि उनका दूध पर्याप्त नहीं है या फॉर्मूला दूध बेहतर है, जो सही नहीं है। जरूरत है दादी, नानी, पिता और परिवार को माँ का साथ देने की, समाज को समझाने की कि स्तनपान सार्वजनिक रूप से शर्म का नहीं, सम्मान का विषय है। माता के भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का शामिल करके, जिसमें कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, सी, ई और के से भरपूर सब्जियों से अपनी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। स्तनपान कराने के तरीके क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। क्रेडल होल्ड, ये पोजीशन बहुत ही सामान्य पोजीशन होती है। ये हर माँ और बच्चे के लिए बहुत ही आरामदायक होती है। शिशु

0: यदि 1 महीने से ज़्यादा की उम्र का है तो यह पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन रहेगी। फ्रांस फ्रेडस होल्ड, अगर आपका बच्चा महज कुछ दिनों का है तो आपके लिए यह पोजीशन बहुत ही सही रहेगी। इस पोजीशन में बच्चा आसानी से माँ की निप्पल को मुंह से नहीं निकाल पाता। फुटबॉल होल्ड पोजीशन, इस पोजीशन को क्लच होल्ड भी कहा जाता है, जैसे फुटबॉल को एक हाथ से पकड़ा जाता है। ये पोजीशन भी काफ़ी आसान रहती है। साइड लाइंग पोजीशन, ये पोजीशन उस समय अधिक कारगर साबित होती है जब बच्चे को सोते समय भी दूध पिलाना है। इसके लिए माता एक तरफ लेटकर बच्चे का मुंह अपनी ओर कर ले। तो साथियों, माँ का दूध पौष्टिक होता है जो बच्चों को संक्रमण से बचाता है। माँ का दूध पशुओं के दूध से अच्छा होता है। ये संक्रमणों व एलर्जी से सुरक्षा करता है। इससे शिशु में सुरक्षा का भाव विकसित होता है जिससे माँ को मानसिक संतुष्टि मिलती है। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहता है जिससे सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है। स्तनों का दूध पीने से शिशु के जबड़े और दांतों का विकास अच्छी तरह होता है। माताओं को स्तनपान के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। स्तनपान के दौरान स्तनों में दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके कारण हार्मोनल हो सकते हैं या फिर कई बार अतिरिक्त मात्रा में दूध बनने की वजह से भी दर्द हो सकता है। जब दूध उत्पादन अधिक होता है तो ऊतकों में ज़्यादा खून बहता है जिसकी वजह से स्तनों में सूजन आ जाती है और महिला का दर्द महसूस होता है। कई बार रूखेपन, दूध ठीक से पंप ना होने या स्तनपान के बाद सफाई ना करने से निप्पल में क्रैक हो सकता है। स्तनपान के पहले हफ्ते में निप्पल से खून भी आ सकता है। स्तनों में यदि ब्लॉकेज हो तो ऐसे में बच्चा जब दूध पीने की कोशिश करता है तो उसे ब्रेस्ट से दूध नहीं मिल पाता है और वो इसे काटने का प्रयास करने लगता है। माँ के स्तनों में दर्द का कारण फंगल इन्फेक्शन या थ्रश भी हो सकता है। कई बार दूध ठीक से नहीं निकल पाने के कारण धमनियों में दूध इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण स्तनों में गांठ बन सकती है। बच्चे का सिर और शरीर सही पोजीशन में ना होना ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। स्तनपान के दौरान आइए जानते हैं क्या-क्या घरेलू उपाय करने चाहिए माताओं को खान पान के लिए। अगर माता अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो सुबह उठकर भिगोई हुई मेथी के दाने का पानी पिए और प्रोटीन उत्पाद जैसे पोहे, उपमा, अंडे, इडली, दाल खाए। फ्रूट्स जैसे केले, चीकू, एप्पल अधिक मात्रा में ले। रात में हल्का गर्म दूध जरूर पिए। इस दौरान अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद तत्व बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी की मात्रा भी कम से कम सेवन करना चाहिए। लहसुन, ब्रोकली और पत्ता गोभी खाने से शिशु को गैस की समस्या हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हर माँ को स्तनपान के लिए समय, सहयोग और सम्मान मिलेगा। हम स्तनपान को सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं, संस्कार की बात बनाएंगे क्योंकि माँ का दूध सिर्फ भोजन नहीं, नवजीवन का अमृत है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता नव जीवन का अमृत है स्तनपान, और वार्ताकार थी सौम्या नागर। बहनों, एक नन्ना बालक अपनी भावनाओं को भले ही शब्दों में व्यक्त ना कर सके लेकिन उसका मन तो कुछ ऐसा ही महसूस करता है। माँ की गोद में सारा जहाँ मिलता है, उसके आंचल में सुकून का साया मिलता है। लड़खड़ाते हैं कदम, वो बस थाम लेती है, वो बिना कहे सब जान लेती है। बहनों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार मिलेंगे आपसे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट परवरिश रिश्ते नाते में।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर

0: से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरी आस्था युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी में है। बहनों, स्वामी विवेकानंद का यह कथन समाज पर युवाओं के प्रभाव को दर्शाता है। आज के युवा कल के सृजनकर्ता, निर्माता और नव प्रवर्तक हैं। बहनों, परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है, इसलिए युवा मन को समझने की पहल पारिवारिक स्तर पर ही की जानी चाहिए। युवा मन ऊर्जा, सपनों और बदलाव की इच्छा से भरपूर होता है, जिसमें माता पिता की भूमिका एक सच्चे मार्गदर्शक, मित्र और संबल की होती है, जो उन्हें सही दिशा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। बहनों, युवावस्था में कदम रखते हुए बच्चों के मन में कुछ नया करने की लगन के साथ भविष्य को लेकर तनाव उलझा

मित्र और संबल की होती है जो उन्हें सही दिशा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। बहनों, युवावस्था में कदम रखते हुए बच्चों के मन में कुछ नया करने की लगन के साथ भविष्य को लेकर तनाव, उलझन और खुद से अपने फैसले लेने की जिद उनके युवा मन की विशेषताएं हैं, जिन्हें समझने में माता पिता कई दफा भूल कर बैठते हैं। जबकि माता पिता होने के नाते हमें भी अपनी भूमिका में कुछ बदलाव कर लेने चाहिए, जैसे कि उनके साथ मित्रवत संवाद स्थापित करके उनके मन की हर बात को जानना और सुनना, बिना किसी दबाव के करियर संबंधी उनकी पसंद को प्राथमिकता देना और असफलता के समय उनका हौसला बढ़ाना। बहनों, जब युवा मन को उनके आसपास ही अच्छा वातावरण मिलेगा, तब शायद उन्हें घर परिवार से बाहर जाकर मित्र बनाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इस उम्र में अपने बालक बालिकाओं की संगति कैसी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। युवा मन की ऊर्जा और उत्साह को दिशाहीन होने से बचाना भी है।

0: है सोना यानी कि स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बहनों आज अप टू डेट सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे स्वर्ण वाले कनक यानी कि गोल्ड की। जी हाँ, हम महिलाओं के जीवन में तो सोने चांदी का महत्व बहुत अधिक होता है। यूँ तो हमारे देश में सोने चांदी के आभूषण पहनने की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है। समृद्धि और धन का प्रतीक होने के साथ साथ इसे आभूषण और पीढ़ी दर पीढ़ी निवेश के रूप में पहना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, सोने को भविष्य की सुरक्षा के रूप में भी देखा जाता है। सोने में निवेश सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से बड़ी गहराई से जुड़ा है। बहनों हम महिलाएं अपने घर परिवार की धुरी होते हैं तो वित्तीय और आर्थिक मुद्दों में भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। गृहस्थी के खर्चों के बाद की गई हमारी बचत को समझदारी से निवेश किया जाए ताकि बचत योजना से हमें अपेक्षित परिणाम भी मिल सकें। बहनों आजकल सरकारी और गैर सरकारी बैंकों वित्तीय कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स सोने में निवेश की योजना में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड SIP, ये सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जिनमें आप बिना किसी स्टोरेज या चोरी के डर से सुरक्षित और आसान तरीके से सोना खरीदने की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। बहनों गोल्ड इन्वेस्टमेंट को और भी समझते हैं अपने कार्यक्रम के सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के माध्यम से, जिसमें हमने की बातचीत एक बैंक कर्मचारी विकास मुद्गल से। कार्यक्रम घर संसार में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: आज आपकी और हमारी बातचीत का विषय है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सोने में निवेश करने के सबसे अच्छे तरीके कौन कौन से हैं।
1: गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है मेरे नजरिए से वो है गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना और स्वर्ण बॉन्ड्स में इन्वेस्ट।
0: फिजिकल गोल्ड खरीदना या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के डिजिटल तरीके अपनाना क्या ज्यादा फायदेमंद रहता है?
1: अगर दोनों में फर्क की बात की जाए तो फिजिकल गोल्ड को खरीद करके उसे कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हम उसे घर में रखते हैं तो घर से बाहर जाते समय बड़ी चिंता का विषय रहता है कि उसे कहाँ संभाल के रखा जाए। इस चक्कर में हम अमूमन घर से बाहर भी नहीं जा सकते। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर हम डिजिटल के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम इन सब समस्याओं से बेफिक्र रहते हैं। दूसरा, उसमें रिटर्न हमें अच्छे मिलते हैं। तीसरा, जैसे कि आज हम फिजिकल में अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो उसका डिज़ाइन आने वाले 10-15 साल में बदल जाता है। तो वही चीज़ जब हम अपने बच्चों को गिफ्ट बतौर देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ये डिज़ाइन अब पुराना हो गया है तो इसे बदल देना चाहिए। यही अगर हम इन्वेस्टमेंट डिजिटल तौर पर करते हैं तो उस कंडीशन में आने वाले समय में हमें सेम वैल्यू की गोल्ड मिलती है। तो हम चाहें तो अपने बच्चों को उस डिजिटल को सेम एज गिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बच्चे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं।
0: ये गोल्ड SIP क्या होती है, इस बारे में भी हम बेसिक जानकारी आपसे चाहेंगे।
1: गोल्ड SIP यह एक उत्तम प्रश्न है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने में निवेश करने का यह सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप हर महीने या तय समय पर एक छोटी या निश्चित राशि के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप अपना पैसा डिजिटल गोल्ड के माध्यम से लगा सकते हैं। इसके फायदे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला फायदा आपको यह मिलता है कि इसमें आपके सोने की चोरी होने या उसकी शुद्धता को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बहुत ही कम पैसों में सोने में निवेश कर सकते हैं। तीसरा, डिजिटल रूप से सोना खरीदने पर आपको किसी भी तरीके का मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। चौथा, बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिल जाती है।
0: गोल्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जो भी जानकारियां आज आपने हमसे साझा की हैं उसके लिए

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। बहनों, इस दोहे में कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है

0: हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहनों, विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य सेगमेंट में हम बात करते हैं कि स्तनपान कराने वाली माँ का आहार कैसा हो। बहनों, प्रसव के बाद भी एक महिला का शरीर लगातार कड़ी मेहनत करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को गर्भावस्था की तुलना में कहीं अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। माँ के दूध में शिशु के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन ये पोषक तत्व माँ के शरीर में मौजूद पोषक तत्वों के भंडार से ही आते हैं। इसलिए बहनों, माँ का आहार पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए और सुपाच्य भी। जैसे प्रोटीन के लिए दालें, उपमा, इडली, अंडा, कम वसा वाला मांस, दूध, मेवे, कैल्शियम के लिए गाय का दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, टोफू, आयरन की भरपाई करने के लिए पालक, फलियां, फोर्टिफाइड अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज, अखरोट और वसायुक्त मछली, अगर आप मांसाहार ले सकती हैं तो। और हाँ बहनों, प्राकृतिक तरीके से विटामिन डी सूर्य की रोशनी से ज़रूर लेना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार स्तनपान कराने वाली महिलाएं विटामिन B12 सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं, क्योंकि बहनों विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु उत्पादों में ही पाया जाता है। शाकाहारी आहार में इसकी पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर पाना मुश्किल है। समझने वाली बात यह है कि माँ पौष्टिक भोजन खाएगी तो बच्चे को भी उचित पोषण मिलेगा। स्तनपान और सही आहार शिशु और माता दोनों की सेहत के लिए जरूरी है। इसी के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पारशर को कार्यक्रम घर संसार का समापन करते हुए। नमस्कार।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ भजन।

0: Hormuz. According to the United Kingdom Maritime Trade Operations, the vessel issued a distress call after being hit about 20 nautical miles northeast of Al-Khazab in Oman on the southern side of the strategic waterway. This comes following the contradicting statements issued by the United States and Iran over the status of negotiations aimed at ending their five-month-old conflict. In badminton, Indian shuttlers began their campaign at the Korea Masters, a BWF Super 300 tournament in South Korean city of Asan Sea today. Men's doubles pair of Krishna Prasad Garagai and Prithvi Krishnamurthy Roy has progressed to the second round after defeating Thai combination in the opening round. Tushar Suvir lost to Shogo Ogawa of Japan 21-10, 21-17 in the qualifiers round of men's singles. In women's doubles, Shruti Mishra and Priya Konjingbaum have bowed out of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament remains gridlocked as repeated protests by opposition members over various issues disrupt proceedings in both houses. Flood situation continues to improve in Odisha as water levels in major rivers recede. Tamil Nadu opposition leader Udayanidhi Stalin taken into police custody over controversial remarks. Unrest mounts in POJK after Pakistani forces open fire on unarmed civilians in Bagh district. Fresh shipping attack in Strait of Hormuz deepens uncertainty over peace talks between US and Iran to end the war. And Indian shuttlers begin campaign at Korea Masters badminton tournament in Asan. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण

0: जाएंगे, मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
5: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो

0: साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
2: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि

0: पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का राग सारंग में गिटार वादन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित विश्व मोहन भट्ट की राग राजस्थानी धुन में गिटार वादन।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट का राजस्थानी धुन में गिटार वादन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म सीआईडी का ये गीत। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था ओपी नैयर का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म छलिया में। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरा साया गई गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, प्रस्तुतकर्ता अनिंद्र सिंह।

0: हेलो मेरी पसंद।
1: साथियों, रात्रि के 10 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुरों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर कली आपकी पसंद से खिली है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे चहेते फरमाइशी प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में। स्वीकार कीजिए मेरा यानी विशेषता शर्मा का प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। दोस्तों, फिजाओं में आज फिर एक नया सुरूर है क्योंकि आपकी पसंद का नगमा अब आपसे बस एक कदम दूर जो है। तो देर किस बात की है, जल्दी से उठाइए अपना फोन और हमें बताइए कि आज आपकी फरमाइश किस गीत के लिए है। और देखिए, पहले श्रोता तो हमसे जुड़ भी चुके हैं, आइए देखते हैं कि कौन है। हेलो,
2: हेलो मेरी पसंद।
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका परिचय?
2: बनवारी लाल कुशवाहा बोल रहा हूँ, गंगानगर कुशवाहा।
1: बनवारी लाल जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया।
1: और क्या चल रहा है इस वक्त?
2: अभी तो फ्री बैठे हुए हैं
1: जी। बनवारी लाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं इस समय तो नोएडा में हूँ।
1: अच्छा, तो नोएडा में मौसम कैसा है?
2: मौसम तो अभी तो धूप पड़ रही है
1: जी। तो अभी आप अपने घर से दूर हैं?
2: हाँ, काफी दूर।
1: त्योहारों का मौसम आ रहा है, अपने घर लौटेंगे आप या घर से दूर ही मनाएंगे?
2: हाँ, कोशिश तो करेंगे कि रक्षाबंधन पर आए।
1: और भी बाकी सारे त्योहारों पे, रक्षाबंधन के अलावा जो त्योहार होते हैं उन पर भी आप घर लौटते होंगे
2: जी। जी,
1: परिवार से दूर रहना कैसा लगता है?
2: नहीं, रहना तो पड़ता ही है
1: जी,
2: काम करना है तो
1: जी। याद तो आती होगी बहुत
2: जी, बहुत याद।
1: ठीक है, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बनवारी लाल जी?
2: उसने भोले बाबा के ऊपर ही सुनवा दीजिए। हमारे मैडम है मंजुलता कुशवाहा, बच्चे हैं राम और श्याम
1: जी
2: और साथी।
1: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
2: और एक सुझाव और देना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका।
2: ये आधे घंटे का कार्यक्रम है तो इसको एक घंटे का कर दिया जाए
1: जी।
2: और दिन में लोकधारा का कार्यक्रम पहले चलता था, लोकधारा का कार्यक्रम शुरू किया जाए
1: जी,
2: तो बहुत ही अच्छा लगे।
1: बनवारी लाल जी, आपके जो भी सुझाव हैं ये हम अनुभाग तक पहुंचा देंगे और फिर जो भी इस ओर प्रयत्न हो सकेंगे वो हम जरूर करेंगे
2: जी।
1: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: चार धाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना बनवारी लाल कुशवाहा की फरमाइश पर। और अगला फोन कॉल हमें आ चुका है, आइए इसको उठाते हैं और सुनते हैं हमारे जो अगले श्रोता हैं वो हमसे कहाँ से जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका परिचय?
1: ग्राम लालो से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नरेंद्र जी, आकाशवाणी आगरा सुनते हैं आप?
1: जी हाँ सुनते हैं।
0: कब से सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा आप?
1: मैं सुन रहा हूँ 97 से सुन रहा हूँ मैडम।
0: 97 से। और अभी आप क्या करते हैं?
1: मैं कपड़े की कंपनी में काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो काम कैसा चल रहा है इस वक्त?
1: काम ठीक चल रहा है। विशेषता जी बोल रही है?
0: जी मैं विशेषता शर्मा बात कर रही हूँ। नरेंद्र जी, सावन का मौसम आ गया है, आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ सावन ने दस्तक दे दी, बारिश हो चुकी है क्या?
1: ये बारिश हो गई सर, को हो रही है लगातार, एक आध दो दिन छोड़ के हो जाती है।
0: अच्छा, यानी सावन पूरी तरह दस्तक दे चुका है।
1: सुना था
0: जी। जी नरेंद्र जी बताएं, आप अपनी फरमाइश कौन से गीत के लिए है?
1: साजन का घर फिल्म का नाम है
0: जी,
1: उसका गाना है सावन आया वो वाला।
0: ठीक है नरेंद्र जी, आपकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: नरेंद्र जी की पसंद पर अभी आप सुन रहे थे साजन का घर फिल्म का गीत। और आइए देखते हैं अगला फोन कॉल हमें कहां से आया है। हेलो।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं दिवाकर बोल रहा हूं मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: और मैं आगरा से ही बोल रहा हूं।
0: जी दिवाकर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूं मैडम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूं। क्या करते हैं दिवाकर जी आप?
1: जी मेरा शेयर मार्केट का काम है, इनकम टैक्स का काम है।
0: जी तो इनकम टैक्स का, जैसे आपने बताया हमें आपका काम है, तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जिन लोगों को इनकम टैक्स भरना होता है या कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करना होता है, तो उसके लिए वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, कब तक उन्हें करना है, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं।
1: इनकम टैक्स के लिए जो आकलन वर्ष होता है वो हर वर्ष मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है
0: जी।
1: और 1 अप्रैल से लेकर अगली साल के 31 मार्च तक के जो अवधि है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी लेन देन हुआ है, वो हमें दिखाना होता है अपने आयकर रिटर्न में, और उसी के आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। टैक्स की जो रोजगार वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। और इसके अलावा अन्य जैसे भी जो भी काम करने वाले लोग हैं, जिनके जैसे पेशे हैं, उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित सरकार करती है।
0: अच्छा, अगर कोई व्यक्ति खुद

0: से अपना इनकम टैक्स जो है वो भरना चाहता है या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो क्या ये भी संभव है या किसी की सहायता लेनी ही होती है?
1: सरकार ने आजकल इतनी सहूलियत दे रखी है
0: जी
1: कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न बना सकता है, उसे किसी भी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर समय कम है या उसे कंफ्यूजन है या उसे उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, तो वो किसी की हेल्प ले।
0: जी दिवाकर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरना जो है, ये हम सब लोगों का कर्तव्य भी है, हम लोगों का दायित्व भी है और हम सब लोगों को भरना चाहिए अगर हम उस दायरे में आते हैं।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: तो आपकी बात से हमें आशा है कि जो हमें सुनने वाले श्रोता हैं वो लाभान्वित होंगे और इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे और हमारी बात को भी ध्यान देंगे कि इनकम टैक्स भरें और इसकी चोरी ना करें, है ना? इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। तो दिवाकर जी, आज इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश किस गीत के लिए है?
1: जी, मैं सुनना चाहता हूँ आज के आपके इस कार्यक्रम में
0: जी
1: धुरंधर फिल्म में जान से गुजरते हैं।
0: ठीक है दिवाकर जी, आपकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे धुरंधर फिल्म का गीत और इस गीत को सुनने की फरमाइश थी दिवाकर की। आइए सुनते हैं अगला फोन कहाँ से है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: मेरा नाम विकास है।
0: विकास, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। और आपका जो रेडियो के लिसनर्स में अगर लिस्ट में बात की जाए तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आकाशवाणी।

0: आगरा का।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आकाशवाणी आगरा को आप नियमित तौर पर सुनते हैं?
0: जी बिल्कुल, रेगुलर।
1: हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
0: मैम मेरे को सुबह वंदना कार्यक्रम विशेषकर स्पेशली जब खुलते ही जब आप स्टूडियो ओपन करते हैं तो उस समय वंदना की जब हम ट्यून करते हैं तो वही भक्ति वाले जो गीत हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है
1: जी।
0: और फिल्म संगीत तो जितने भी आपके सारे रहते हैं सेगमेंट, 12:30 वाला रहता है, कभी समय होता है तो दोपहर वाले जो भूले बिसरे गीत भी है वो भी मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है।
1: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमें इतने प्यार से सुनते हैं। तो विकास जी, आज इस कार्यक्रम में किस गीत की फरमाइश है आपकी?
0: मैम छिछोरे फिल्म का एक गीत है, खैरियत पूछो।
1: ठीक है,
0: अगर आप उसे सुनवा पाए तो मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू यू।
1: बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, इस गीत को आप और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: ये गीत मैं अपनी पूरी फैमिली को डेडिकेट करूंगा।
1: नाम भी चाहे तो बता सकते हैं हमें?
0: हाँ, विनोद शर्मा जी
1: जी,
0: सरोज शर्मा जी और मिली युग और प्रिंसी।
1: ठीक है विकास जी, आप अपनी पसंद पर, अपनी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे विकास जी की पसंद पर छिछोरे फिल्म का ये गीत। और अगला फोन कॉल हमें आ चुका है, फोन हमें इशारा कर रहा है, तो आइए उठाते हैं और देखते हैं ये फोन हमें कहाँ से आया है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं?
1: हाँ जी, मैं छवि बोल रही हूँ।
0: छवि, आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं सिकंदरा आवासीय कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: छवि जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ।
0: छवि जी, और क्या करती हैं आप?
1: हाँ जी, मैं होम मेकर हूँ।
0: हाउसवाइफ हैं आप, और इसके अलावा भी कुछ आप अपने शौक होंगे आपके जिन्हें पूरा करती होंगी?
1: हाँ, मैं सिंगिंग सीखती हूँ
0: अरे वाह,
1: और स्टडी भी मेरा शौक है।
0: मतलब आप अभी हाउसवाइफ हैं और आप अपने शौक जो हैं अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर रही हैं।
1: जी,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है छवि जी, और हम चाहते हैं कि हमें सुनने वाली जो बहनें हैं वो भी आपसे सीखें कि कैसे शादी के बाद में आप एक घर को संभालते हुए भी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं, अपने गाने का शौक है, नृत्य का शौक है, उसे भी पूरा कर सकती हैं। तो गायन जो है वो सीख रही हैं आप अभी?
1: जी हाँ, सीख रही हूँ।
0: किस तरह का शास्त्रीय संगीत सीखती हैं आप? या
1: शास्त्रीय संगीत बेसिक से सीख रही हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये। तो छवि जी, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी, मैं अभिमान फिल्म का नींद ना मिला रे मन का किशोर कुमार का गाया हुआ गीत सुनना चाहूंगी।
0: ठीक है छवि जी, आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आप और किस किस के साथ सुनेंगी?
1: मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली के मेंबर मेरे साथ साथ सुने।
0: बिल्कुल छवि जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

साथियों, अब वक्त की सुइयां कह रही हैं कि हम आपको अलविदा कह दें, पर यादों का ये सुरीला कारवा यूं ही चलता रहेगा। हेलो मेरी पसंद के आज

के सफर को यहीं रोकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर होगी आपके पसंद के गानों और आपकी मीठी बातों से यही हसीन मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। अपनी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। संवादक थी विशेषता शर्मा और प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। इस कार्यक्रम के साथ ही हमारे इस सभा के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 3:30 हुए हैं। अब इस सभा के कार्यक्रम यहीं समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।

चार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास

0: वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। पीओजेके में जो हो रहा है वो जनता का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसानगा और चालोएम्पोन चारोएन कीर्तामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरसन।

शाम 5:30 का समय रहेगा हमारे युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज होगी चर्चा जिसका विषय होगा नमस्ते योजना। साथ ही होंगे सेगमेंट्स आज का सवाल, अतुलनीय भारत, हेल्थ प्लस और होंगी चलते चलते कुछ बातें। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में होगी एक खास वार्ता जिसका विषय होगा स्वराज्य, सेवा और स्वाभिमान के अग्रदूत सर फिरोज शाह मेहता और वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह। साथ ही आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का। शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा पॉली हाउस की उपयोगिता। साथ ही होगी भेंट वार्ता जिसका विषय होगा आकाशीय बिजली से सुरक्षा, जिसमें आज अदिति उमराव से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। साथ ही होंगे सेगमेंट्स इस पखवाड़े के कृषि कार्य, नई खोज, मंडी भाव, जानिएगा मौसम का हाल और आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा लोकगीतों का।

शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा बाल श्रम। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा प्रतिबल प्रबंधन, और वार्ताकार होंगे डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल। इसके अलावा होंगे सेगमेंट्स आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स, और आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का।

शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा बच्चों पर मत थोपिए अपनी महत्वाकांक्षा। इसकी वार्ताकार होंगे डॉक्टर गिरिराज किशोर।

शाम 7:31 का समय रहेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 8:20 का समय रहेगा विधानमंडल समीक्षा का, जो अनुप्रसारित होगी हमारे लखनऊ केंद्र से। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 का समय रहेगा मनी टॉक और मंथन का, जो अनुप्रसारित होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 का समय रहेगा संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का, जो अनुप्रसारित होगी हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज सुनिएगा धमार गायन, राग मालकौंस में कलाकार होंगी इरा मुखर्जी। इसी के साथ हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसंध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गोपी से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ईश्वर से नितिन मुकेश, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लो मैं आ गया से, उदित नारायण, नूतन और साथियों की आवाज में। देव कोहली, राजेश मलिक, आनंद राज आनंद और सलीम सागर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोता, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे फिल्म लो मैं आ गया से भजन। इसी के साथ हम आज का हमारा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न करते हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग साथियों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी आगरा और आज कार्यक्रम युववाणी में स्वागत है हमारे सभी युवा लिसनर्स का। आप है मेरे यानी अपनी रेडियो साथी राशि के साथ। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसमें आज बात होगी नमस्ते योजना से जुड़ी। ले चलेंगे आपको दुधवा बाघ रिजर्व की सैर पर और जानेंगे कैसे बीमारियों को दावत देता है मोटापा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर चर्चा के साथ जिसका विषय रहेगा नमस्ते योजना। साथियों हमारे शहरों को साफ रखने वाले सफाई मित्रों का सम्मान और उनकी सुरक्षा ही आधुनिक भारत की असली पहचान बनाने का महत्वपूर्ण कदम है। इसी सम्मान की पहल करती है नमस्ते योजना। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को 100% मशीनीकृत यानी मैकेनाइज्ड बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी सफाई कर्मचारी को जोखिम भरी परिस्थितियों में हाथ से सफाई करने से रोकना है। इस योजना के तहत सफाई मित्रों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण, हेल्थ इंश्योरेंस और मशीनी उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी और लोन दिया जाता है। इससे न केवल उनके जान की सुरक्षा होती है बल्कि उन्हें एक सम्मानित उद्यमी बनने का मौका भी मिलता है। साथियों हम युवाओं का ये दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को इस योजना के प्रति जागरूक करें, उन्हें इस तकनीक और सम्मान की पहल से जोड़ें और अपने सफाई मित्रों के सुरक्षित भविष्य के साथ एक आधुनिक और संवेदनशील भारत की पहचान का निर्माण करें। तो साथियों ये थी नमस्ते योजना पर चर्चा। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक जिसके बाद जानेंगे स्वराज में सर फिरोज शाह मेहता का योगदान।

0: साथियों, भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती दौर में जब स्वाभिमान और स्वराज की अलख जगाई जा रही थी, तब जिस महान नेता ने कानून और निडरता को अपना हथियार बनाया वो थे सर फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे का शेर यानी लाइन ऑफ बॉम्बे कहे जाने वाले सर फिरोज शाह मेहता भारत के एक महान बैरिस्टर, समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने मुंबई नगर निगम के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने देशवासियों को सिखाया कि अपनी बात को तर्क, कानून और अधिक स्वाभिमान के साथ कैसे रखा जाता है। साथियों, आज हम युवाओं के लिए उनका ये संदेश, शिक्षा और कानूनी ज्ञान के बल पर किसी भी अधिकार को हासिल किया जा सकता है, ये संदेश उनका जीवन हमें प्रदान करता है। तो आज उनकी जयंती पर आइए उनके योगदान को याद करते हैं इस वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है स्वराज, सेवा और स्वाभिमान के अग्रदूत सर फिरोज शाह मेहता। वार्ताकार है अनिंद्र सिंह।
1: जब भारत में स्वतंत्रता का सपना अभी अधखिला था, तब एक युगदृष्टा ने संविधान, कानून और नगर प्रशासन की मशाल थामकर देश की चेतना को झकझोरा। वह नाम था लोक सेवा के पुरोधा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शिल्पी सर फिरोज शाह मेहता। 19वीं सदी के उस दौर में जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के शिकंजे में कराह रहा था, सर फिरोज शाह मेहता ने देशभक्ति को केवल आंदोलन या नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मुंबई के अनौपचारिक नगर नियोजक के रूप में सेवा, शिक्षा, न्याय और पत्रकारिता के माध्यम से उसे जी कर दिखाया। उन्हें केवल बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जनक कहना भर बिल्कुल ठीक न होगा। वे सच्चे अर्थों में स्वराज्य, सेवा और स्वाभिमान युक्त सशक्त लोक प्रशासन के अग्रदूत थे। 4 अगस्त 1845 को मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जन्मे सर फिरोज शाह मेहता उन पहले भारतीयों में से थे जिन्होंने ग्रेस इन से इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर एट लॉ बने। लेकिन उन्होंने इस शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए साधन बनाया। एक बैरिस्टर के रूप में उन्होंने कानून का अध्ययन सिर्फ अदालतों में केस जीतने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी को, आम भारतीय को न्याय दिलाने के लिए किया। उनका मानना था कि जिस देश के नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को नहीं जानते, वह देश कभी स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ उन्होंने नगर प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली और उसे लोगों की सेवा का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि शिक्षा वह मशाल है जो केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि समाज के अंधकार को भी चीरती है। उनकी प्रतिभा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह कार्यों में भी बदलती थी। जब वे मुंबई नगर निगम के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को क्रांतिकारी रूप से सुधारा। यही कारण है कि उन्हें मुंबई का आधुनिक नगर निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 के स्वरूप को तैयार किया, जो आज भी स्थानीय प्रशासन की रीढ़ है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और 1890 में इसके अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनके लिए राजनीति कभी कुर्सियों की होड़

0: नहीं रही। वह तो एक जनसेवा का धर्म थी। वे हमेशा संविधान सम्मत सुधार, शांति और संवाद के पक्षधर रहे। उन्होंने कांग्रेस को केवल एक मंच नहीं बल्कि विचारशील राजनीति और राष्ट्र निर्माण का स्कूल बनाया। कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने दो बार अध्यक्षता की, एक बार 1890 में और दूसरी बार 1910 में। लोकतंत्र में जनशक्ति को ही वे आधार स्तंभ मानते थे। उनका कहना था कि भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली शक्ति तलवार नहीं बल्कि विवेक, संवाद और जनचेतना है। उनके विचारों में कट्टरता नहीं, विवेक था। वे न उग्र राष्ट्रवाद के अंधानुयायी थे और न ही अनुगामी नरमपंथी। वे प्रगतिशीलता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, स्वच्छता, कानून और संगठन में भी बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। वे कहते थे कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है जो आत्मविकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में सन्निहित है। पत्रकारिता को वह राष्ट्र की चेतना का आईना मानते थे। उनके लिए पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि यह सत्य और न्याय का मिशन था। सन 1905 में उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे अखबार को शुरू किया ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंच सके। यह केवल समाचार पत्र नहीं था बल्कि ब्रिटिश शासन की नीतियों की समीक्षा करने वाला एक विवेकशील मंच था। उन्होंने महिला शिक्षा, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से आगे बढ़ाया, वह भी उस दौर में जब इन विषयों पर चर्चा तक करना कठिन था। उनका जीवन सर्वधर्म संभाव और समन्वय की शक्ति का प्रतीक था। उनके लिए भारत की विविधता उसकी शक्ति थी, विघटन नहीं। उनका सोचना था कि भारत में विविधता एक बाग की तरह है जिसके हर फूल का रंग अलग है लेकिन सब मिलकर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। आज जब हम 21वीं सदी में शहरी विकास, पारदर्शिता, सुशासन, स्वच्छ भारत, स्थानीय प्रशासन में जवाबदेही जैसे विषयों पर बात करते हैं, जब हम डिजिटल विकास और स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो हमें फिरोज शाह मेहता की याद आती है। नगरों को जनसेवा का केंद्र बनाने की सोच सबसे पहले सर फिरोज शाह मेहता जैसे दूरदृष्टा नेताओं ने ही दी थी। एक नागरिक के रूप में सक्रिय भागीदारी, राजनीति में नैतिकता और मीडिया की भूमिका तथा लोक सेवा में ईमानदारी जैसे आज के मुद्दे तब भी उनके एजेंडे में थे। सर फिरोज शाह मेहता की विचारधारा और कार्य आज भी जीवित हैं। वे भारत के साइलेंट आर्किटेक्ट थे, जिनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी लेकिन जिनका प्रभाव गहरा था। उनकी सेवा, उनका स्वाभिमान और उनका संकल्प हमारे वर्तमान का प्रकाश और भविष्य की राह है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र सेवा केवल आंदोलन या राजनीति से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर भी की जा सकती है। उनकी यह सोच हमें प्रेरणा देती रहेगी कि यदि देश का हर नागरिक अपने नगर, अपने कर्तव्यों और अपने समाज के प्रति सजग रहेगा, तभी देश सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा, समृद्ध होगा।
1: साथियों, आज हम युवाओं को सर फिरोज शाह मेहता के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वराज और स्वाभिमान की इस मशाल को अपनी सोच में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था स्वराज, सेवा और स्वाभिमान के अग्रदूत सर फिरोज शाह मेहता। वार्ताकार थे अनिंद्र सिंह। साथियों, समय है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, जिसके बाद चलेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व की सैर पर।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों जरा सोचिए, आप इस सुहाने मौसम में जंगल की शांति और हरियाली के बीच ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों के आसपास घूम रहे हैं और तभी अचानक सामने आ जाए एक राजसी बाघ। रोमांच के इसी एहसास का दूसरा नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। साथियों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व बायोडायवर्सिटी का एक अद्भुत खजाना है। तराई क्षेत्र में फैला ये रिजर्व स्वॉम्प डियर्स, वन हॉर्न राइनो और रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ का दलदली इकोसिस्टम, घने जंगल और शांत नदियाँ इसे वन्य जीवों के लिए स्वर्ग बनाती हैं। इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि रखने वाले हमारे युवा साथियों के लिए ये जगह प्रकृति के करीब आने और एनिमल कंजर्वेशन को गहराई से समझने का एक बेहद शानदार जरिया है। अगर आप भी कुदरत की खूबसूरती को

से देखना चाहते हैं तो दुधवा का रुख जरूर करें, क्योंकि ऐसा रोमांच आपको जिंदगी भर याद रहेगा। साथियों, बात जब घूमने की हो और म्यूजिक ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो चलिए, जब तक आप दुधवा टाइगर रिजर्व जाने के बारे में सोच रहे हैं, हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, क्या आपकी कमर का नाप धीरे धीरे बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप सिर्फ मोटापा समझ रहे हैं, वो असल में कई बीमारियों का खुला निमंत्रण है। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में घंटों कुर्सी पर बैठना, अनहेल्दी जंक फूड और वर्कआउट की कमी युवाओं में पेट की चर्बी यानी विसरल फैट को बढ़ा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट पर जमा ये अतिरिक्त फैट सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं बिगाड़ता, बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता है। इससे बचने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, सीढ़ियों का इस्तेमाल, जंक फूड से दूरी और संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, तो आज ही से अपनी आलसी जीवन शैली को बदलिए, नियमित व्यायाम अपनाइए और बीमारियों के इस बसेरे को अपने शरीर से हमेशा के लिए हटा दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। साथियों, इसी के साथ आइए आनंद लें कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामलोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, सावन का महीना चल रहा है यानी बरसात का मौसम। इस मौसम में पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। वहीं दूसरी ओर इस मौसम में कीट पतंगों, रोगाणु, विषाणु

जीवाणुओं खूब पनपते हैं, जिनसे बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम किसानों के लिए यह मौसम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी बरसात से ही हमारी खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई का प्रबंध होता है। लेकिन अगर बरसात ज़्यादा हो तो भाई बाढ़ का खतरा बनता है, और अगर कम हो तो सूखे का खतरा रहता है। यानी पर्यावरण का कोई भी बदलाव हमारी कृषि को सीधे प्रभावित करता है। इसीलिए किसान साथियों, हमें पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों के लिए उन कृषि पद्धतियों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें आंधी, तूफान, पाला, सूखा और अधिक बरसात में भी खेती की जा सके। ऐसी ही एक कृषि पद्धति है पॉली हाउस में खेती। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे देश की करीब 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हम किसान अपनी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाते हैं, जो कि मानसून पर निर्भर है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न तेजी से बदल रहा है, इसीलिए पॉली हाउस में खेती आज के दौर में बेहतर कृषि तकनीक है। पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरक्षित संरचना है, जिसका मुख्य उपयोग बेमौसम खेती फसलों की रक्षा कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। साथियों, पॉली हाउस अत्यधिक गर्मी, भारी बरसात, पाला और तेज हवाओं से फसल को सुरक्षित रखता है। साथ में पॉली हाउस के नियंत्रित वातावरण में साल के किसी भी समय कोई भी फसल को उगाना संभव है। किसान साथियों, नियंत्रित तापमान और नमी के कारण सामान्य खेती की तुलना में अधिक पैदावार मिलती है। साथ में पॉली हाउस की पारदर्शी पॉलीथीन शीट जो कीटों, पक्षियों और कई प्रकार की बीमारियों को अंदर न आने की वजह से हमारी फसल को सुरक्षित रखती है। किसान साथियों, पॉली हाउस खेती में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हम पानी और खाद का उपयोग बहुत ही सटीक और कम मात्रा में कर पाते हैं। यानी कि पॉली हाउस में हम पानी की बचत भी करते हैं और खाद की बचत भी करते हैं। किसान साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पॉली हाउस कैसे बनवाएं, कितना खर्चा आएगा और इसमें क्या सहायता हमें मिल सकती है। साथियों, हमारे देश में पॉली हाउस बनाने के लिए आम तौर पर 50% से 70% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा मिलती है। यह सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राज्य सरकारों के उद्यानिकी विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाता है, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को यह अनुदान 70% से 95% तक विशेष सहायता के रूप में दिया जाता है। साथियों, पॉली हाउस को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बनाया जाता है। निम्न तकनीकी पॉली हाउस, यह 400 से 500 वर्ग मीटर में बनाया जाता है। यह कम लागत का पॉली हाउस होता है। यह फसलों को ठंडी जलवायु परिस्थितियों से बचाता है और जाल का उपयोग नमी और तापमान को नियंत्रित रखने के लिए किया जाता है। साथियों, मध्यम प्रौद्योगिकी पॉली हाउस, यह 900 से 1200 वर्ग मीटर में बनाया जाता है। इसके निर्माण में गैल्वेनाइज्ड लोहे का उपयोग किया जाता है। इसमें तापमान और आर्द्रता बनी रहती है। ऐसे पॉली हाउस का इस्तेमाल ज़्यादातर गर्मी के मौसम में किया जाता है। इसके बाद हाई टेक्नोलॉजी पॉली हाउस सिस्टम, यह करीब 2500 से 4000 वर्ग मीटर में बनाया जाता है। इसमें मशीन आधारित तापमान एवं नमी का कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें पूरे वर्ष बढ़ती फसलों के लिए तापमान, नमी और सिंचाई को ध्यान में रख कर के सब कुछ नियंत्रित किया जाता है। किसान साथियों, पॉली हाउस में साल भर फसल उगा सकते हैं। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बंद गोभी, गेरवेरा और गुलाब के फूल, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, अंगूर, ऐसी कई फसलों को हम उगाकर लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पॉली हाउस की खेती में जल संरक्षण का एक शानदार तरीका मिलता है, क्योंकि भाई पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई करके पानी की बचत जो हम करते हैं, तो इससे जल संरक्षण में भी बहुत सहायता मिलती है। पानी की बचत करने के बाद हमें साथ में उसमें नियंत्रित रूप से खाद का उपयोग करते हैं, तो खाद की बचत भी हम करते हैं। पॉली हाउस में ज़्यादातर खेती हम जैविक रूप से करते हैं।

0: तो जो उत्पाद मिलते हैं वो जैविक उत्पाद मिलते हैं और उनकी कीमत भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। तो किसान साथियों, पॉली हाउस की खेती हमें आमदनी की दृष्टि से भी बहुत अच्छी साबित होती है। पॉली हाउस से किसान अच्छा लाभ कमाएं, इसीलिए उन्हें पॉली हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसके नियंत्रित वातावरण एवं आपदाओं से सुरक्षित वातावरण में साल भर फसल ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अपनी क्षमता के अनुरूप पॉली हाउस बनाकर उससे अधिक से अधिक लाभ लें और साल भर उत्पादन करके अपने को संभल बनाएं। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आज के इस वैज्ञानिक और आधुनिक दौर में हर क्षेत्र में नई खोज एवं नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा रहा है, तो भाई ऐसे में हमारा कृषि क्षेत्र क्यों पीछे रहे? हाल के वर्षों में कृषि यंत्रों, कीटनाशकों में बहुत सी नई खोजें देखने को मिली हैं, जिनसे हमारी खेतीबाड़ी को बहुत लाभ मिल सकता है। जैसे कीटनाशकों की नई खोजों में मुख्य उद्देश्य रहा है कि भाई वे पर्यावरण के अनुकूल हों, कम जहरीले एवं अधिक प्रभावशाली हों। ऐसे ही कुछ कीटनाशकों के बारे में आज हम आपको बताते हैं, जैसे कि नैनो कीटनाशक। यह पौधों की पत्तियों से मजबूती से चिपक जाते हैं। यह नैनो कीटनाशक न केवल कीटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि बरसात में धुलते भी नहीं हैं, जिससे किसान कम मात्रा का उपयोग करके बेहतर परिणाम ले सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोबियल कीटनाशक हैं, जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यह केवल लक्षित कीटों पर असर करते हैं और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा नीम और जैविक कीटनाशक, इसमें प्राकृतिक रूप से नीम और लहसुन के अर्क को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। यह घरेलू कीटनाशक एप्सम साल्ट और नीम के तेल से भी बनाए जाते हैं, जो कीटों को सुखाकर मार देते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा फलों की मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए जेल कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जो धीरे धीरे रिलीज होता है। कीटनाशकों की तरह कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए कृषि यंत्रों की नई खोजों की कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जैसे कि कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग करना। इससे कीटनाशकों एवं उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जाता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। किसान साथियों, आज के इस एआई के दौर में भाई हमारे कृषि यंत्रों में भी एआई का उपयोग खूब किया जा रहा है, जैसे कि एआई आधारित ऑटोनोमस ट्रैक्टर, जो बिना ड्राइवर के जीपीएस के उपयोग करके खेत की जुताई, बुवाई और कटाई भी कर सकते हैं, जिससे किसानों को कम मेहनत करनी पड़ती है। कृषि रोबोट, इनका उपयोग फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसल की निगरानी में किया जा सकता है। साथियों, कुल मिलाकर कृषि में नई खोज बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इनका उपयोग करके पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायता मिल सकती है और समय एवं पैसों की बचत होती है। तो किसान साथियों, कृषि क्षेत्र की इन नई खोजों का उपयोग करें और

लाभ लें। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सावन के इस पवित्र मास में संगीत का आनंद लेते हैं और सुनते हैं यह मधुर लोकगीत।

0: किसान साथियों, मौसम कोई भी हो, हम किसानों को खेतीबाड़ी के काम लगे ही रहते हैं और इसके लिए हमें अपने खेतों पर घर से निकलकर जाना ही पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, बरसात के इस मौसम में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों बरसात के साथ साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। तो आज हमारी भेंट वार्ता में इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए आकाशीय बिजली से सुरक्षा पर वर्तमान वार्ताकार अदिति उमराव से अनिल सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: ये जो हमारा मानसून का सीजन है, इस मौसम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, जिसमें हम सुनते हैं कि फला जगह बिजली गिर गई या वज्रपात हो गया। ये वज्रपात की घटनाएं बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होती हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परियोजना निदेशक अदिति उमराव जी। अदिति जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू। नमस्कार
1: अदिति जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वज्रपात की, आप इसको किस रूप में देखती हैं?
2: ये एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में, जनहानि की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ी आपदा के रूप

0: लाइटनिंग या वज्रपात हो रहा है और ये एक ऐसी आपदा है जिसको हम रोक तो नहीं सकते हैं घटित होने से। वज्रपात तो प्राकृतिक घटना है जो कि होगी ही, लेकिन यदि हम कुछ सावधानियां बरतें तो जो हमारे लोगों की जाने जा रही है, जनहानि हो रही है, उससे हम निश्चित रूप से बच सकते हैं।
1: जी जरूर।
0: इस समय धान बुआई का समय है तो लोग धान लगाने का कार्य खेतों में कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग खेतों में बाहर होते हैं और जब बिजली गिरी तो वो खेतों में होते हैं, नजदीक कोई पेड़ होता है तो उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं और पेड़ के नीचे जाना तो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पेड़ विद्युत का सुचालक होता है, वो ग्रहण करता है उसको और जैसे ही पेड़ के नीचे आप खड़े होते हैं तो आप अपना वज्रपात से जो आपका जो संवेदनशीलता है उसे और बढ़ा लेते हैं, यानी बिजली गिरने की जो संभावना है
1: उससे होने वाला नुकसान हमारे लिए और ज्यादा
0: बढ़ जाती है आपके ऊपर। तो ये सावधानी हमें बरतना है कि यदि हम खुले में हैं तो हम पेड़ के नीचे नहीं जाएं, यदि बिल्कुल खुला क्षेत्र है तो वहाँ पर हम और आसपास छुपने की और कोई जगह नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम वहीं पर जहाँ है वहाँ पर हम बैठ जाएं घुटने मोड़कर और अपने कानों को बंद कर लें बैठ करके और सिर को नीचे थोड़ा सा झुका लें। सबसे पहला प्रयास तो हमें यही करना है कि यदि ऐसा लग रहा है कि लाइटनिंग होने वाली है, पहले से थोड़ा आशंका होने लग जाती है, तो पहला प्रयास तो हमें यही करना है कि हम इंडोर चले जाएं, घर के अंदर चले जाएं। और अगर कार है या कोई वाहन है जो ऊपर से बंद वाहन होता है उस वाहन के अंदर रहें, और अगर नहीं जा सकते हैं तो इस प्रकार हम बैठ सकते हैं वहाँ पर जमीन में बैठ जाएं। और यदि वज्रपात का प्रभाव हो गया है तो फिर वज्रपात में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे ज्यादा आशंका हृदयाघात की रहती है, हार्ट अटैक की। तो उस समय मतलब अगर किसी को अटैक हो गया है बिजली का तो वज्रपात का, तो वहाँ पर हमें उसे लिटा करके और हमें उसे CPR देने का प्रयास करना है। CPR का प्रशिक्षण आजकल स्कूलों में भी दिया जाता है और बच्चों को भी सिखाया जाता है, हृदय में सीने पर दबाव डालना की एक विशेष विधि होती है, इसको CPR कहते हैं। तो वो देते जाएं और तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय में पहुँचाने का प्रयत्न करें। तो ये कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी होती है तो हम कुछ बचाव कुछ हद तक कर सकते हैं ऐसे। और जैसे खुले तार होते हैं बिजली के, इन बिजली के तारों के नीचे हमें नहीं खड़े होना है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत एक पुल है तो हमें पुल के नीचे भी नहीं खड़े होना है। तो इस तरीके की सावधानियां हमें बरतने का प्रयास करना है। छतरी है तो छतरी हमें नहीं लेना, उस समय लोहे की कोई वस्तु हमारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर हल चला रहे हैं तो हल आपको छोड़ देना है, अगर आपके हाथ में कोई लोहे की वस्तु है, छतरी है या कोई और चीज है, टॉर्च है, तो उसको भी हमें तुरंत अपने हाथ से फेंक देना है, हटा देना है उसे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हम बरत करके इस आपदा से कुछ बचाव कर सकते हैं अपना।
1: तो समझना ये है कि हमें अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर लेना है, मिनिमम एक्सपोजर जो हमारा शरीर का है वो बिजली के लिए होना चाहिए।
0: हाँ, दूसरा ये भी हमें ख्याल रखना है कि कई बार जैसे लोग बाहर खेतों में काम कर रहे हैं और बिजली अचानक से गिर रही है तो सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पर लोग खड़े हों। अगर वज्रपात हो रहा है या आप देख रहे हैं कि बिजली बस गिरने ही वाली है तो आप दूर दूर हो जाएं, नजदीक खड़े होना भी वज्रपात को और बढ़ावा देता है।
1: ये ध्यान रखना है कि हम गीले हैं तो हम सूखे जगह पे जाने का प्रयास करें।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: मतलब जितना हम इंडोर रह सकें, जैसे कई बार लोग घर के अंदर भी होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब बिजली गिर रही होती है तो हम बारिश देखने के लिए बालकनी में खड़े हो जाते हैं अपना लोहे का ग्रिल पकड़ करके या खिड़कियों के पास खड़े हो जाते हैं, तो खिड़की के पास खड़े होना या बरामदे में खड़े होना ये भी आपको बहुत, ये लगभग खुले में रहने जैसा ही होता है। तो मतलब अंदर रहने से आशय ये है कि सूखी जगह पर और बंद छत के नीचे आप रहें अंदर।
1: जी, जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनका जो पशुधन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उनका, तो अपने साथ साथ अपने पशुधन की किस तरह से वो सुरक्षा करें इस वज्रपात से।

0: में भी लागू होता है कि जैसे हम इंडोर रहने का प्रयास करते हैं, अंदर जाते हैं जब विकास पूरा होता है या होने की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: तो इसी प्रकार हमें अपने पशुओं को भी प्रयास करना है कि हम उन्हें बाड़े में ही रखें, खुले में अगर वो हैं तो उनको अंदर कर लें, और अगर शेड आसपास बिल्कुल भी नहीं है तो फिर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लोग अपने जानवरों को पेड़ों से बांध देते हैं, पेड़ों के नीचे खूंटा लगा करके वहीं पर वो उन्हें बांध देते हैं ताकि उनको छाया मिलती रहे दिन भर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वज्रपात के समय उनको आप पेड़ों के नीचे से बिल्कुल खोल दें, उनको बाहर जाने दें, तो मतलब उनका जो आशंका है उनके ऊपर वज्रपात की वो कुछ कम हो सकती है, क्योंकि यदि वो पेड़ के नीचे बंधे हुए खूंटे के साथ तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो उनके साथ भी वही प्रिंसिपल है कि उन्हें भी हमें इंडोर ले जाने का प्रयास करना है, और अगर खोल नहीं सकते हैं तो हमें उन्हें पेड़
1: के नीचे
0: से हटा देना है। और जो उनके गले में जंजीर पड़ी होती है, तो जानवरों के गले में जंजीर लगा करके उन्हें बांधते हैं
1: जी।
0: तो जंजीर भी बहुत घातक है क्योंकि वो भी लोहे से बनी होगी, तो उसको भी हमें हटा देना है उनके गले में से
1: जी। मैडम एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथी अगर कहीं वाहन से यात्रा कर रहे हों तो उस सूरत में उनको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है?
0: अगर आप वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो खिड़कियों को पूरा बंद कर लीजिए, पूरा ऊपर तक और कसके टाइट, और उसके बाद आप अंदर ही रहें, क्योंकि आप अगर किसी तत्काल किसी बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं तो बहुत सेफ है, लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं है, आप यात्रा में हैं, रोड साइड में हैं, तो फिर आप हार्ड टॉप वाली, अगर आप वाहन में बैठे हुए हैं ऊपर उसका जो टॉप है, जो उसकी छत है वो हार्ड है, तो आप खतरे से खतरा कम है आपके ऊपर, खिड़कियों को बंद करके अंदर बैठे रहें।
1: ध्यान ये रखें कि आपको जो कार है जिसका मेटलिक बॉडी है वो नहीं छूना है।
0: हाँ, उससे हमें दूर रहना है
1: जी।
0: उससे हमें दूर रहना है, मेटल हमारे से टच नहीं हो
1: जी। तो ये ऐसी कुछ सावधानियां हैं जिनके जरिए हम वज्रपात जैसी आपदा से अपने आप का जो नुकसान
0: है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और भी आपको जानकारी देना चाहूंगी कि राज्य आपदा मोचक निधि से अगर कोई वज्रपात से पीड़ित व्यक्ति है, किसी के परिजन की मृत्यु हो गई है वज्रपात के कारण या उसके मवेशी की जान चली गई है, तो इस सूरत में उसको राज्य आपदा मोचक निधि से 4,00,000 रूपये मृतक के परिवार को अहैतुक सहायता के रूप में धनराशि राहत सहायता प्राप्त होती है
1: जी।
0: और अगर कोई पशु की मृत्यु हो गई है वज्रपात के कारण तो उसे 30,000 रूपये प्रत्येक बड़े पशु के लिए मिलता है, लेकिन दोनों ही सूरत में पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई दुर्घटना से व्यक्ति कोई इसमें ग्रसित हो जाता है वज्रपात से, तो वो पोस्टमार्टम करा करके और उसके लिए अप्लाई, उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने संबंधित तहसीलदार या एसडीएम के कार्यालय में दे सकते हैं, और उपजिलाधिकारी के कार्यालय से उनको ये राहत सहायता प्राप्त होती है
1: जी। अदिति जी आप हमारे साथ जुड़ी, और जो वज्रपात जैसी आपदा है उससे किस तरह बचा जाए, किस तरह उसके नुकसान को कम किया जाए, इस बारे में हमसे विस्तार पूर्वक बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओ, अभी आपने हमारी भेंट वार्ता में आकाशीय बिजली से सुरक्षा पर अदिति उमराव से अनिल सिंह की बातचीत सुनी, और आइए अब कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और बरसात के इस मौसम में आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

श्रोताओं, आइए चलते चलते अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। किसान साथियों, इस बदलते मौसम में बरसात के दिनों में अपना और अपने पशुओं का ध्यान रखें। आज के ग्रामीण कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की यशपाल सिंह को आज्ञा दीजिए। आप सबको हमारी राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी साथियों का। दोस्तों, कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आज का प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं को सोच कर रखना है, जिससे जब हम कार्यक्रम के अंत में उसका जवाब दें तो हमारे श्रोता अपने सोचे हुए उत्तर को दिए गए जवाब से मिला सकें। आपको बताना है कि विश्व की कुछ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली भारत की एक पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। सभी श्रोता सवाल एक बार फिर सुन लें कि आज आपको बताना है भारत की उस पर्वत श्रृंखला का नाम जिसे विश्व की कुछ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं देश में मौजूद उस समस्या के बारे में जिसे इतनी प्रगति होने के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है। और श्रोताओं, यह समस्या है बाल मजदूरी या बाल श्रम।

साथियों, बाल श्रम हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका हम सभी को एकजुट होकर सामना करना है। आज समय आ गया है कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी। अपने देश भारत की बात करें तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना आज एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि यहाँ बच्चों के माता पिता ही बच्चों से काम करवाने लगे हैं। आज हमारे देश में किसी बच्चे को कठिन से कठिन काम करते हुए देखना आम बात हो गई है। हमारे समाज में फैली इस अव्यवस्था में बच्चों से उनका बचपन, खेल कूद, उनकी शिक्षा का अधिकार छीनकर काम में लगा दिया जाता है। उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कम रुपयों में काम कराकर शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदल दिया जाता है। कानून की बात करें साथियों, तो अपने संविधान के अनुसार बाल श्रम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाया पाया जाता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान भी है। अपने देश में बाल मजदूरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गरीबी, दुर्घटनावश बच्चे का अनाथ हो जाना, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियां, बढ़ती ज़रूरतें, जनसंख्या वृद्धि और हाँ, भ्रष्टाचार। यूं तो सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों में ही कुछ रास्ते बनाकर कई लोग बाल श्रम को अंजाम देते हैं और अपने फायदे को लेकर कई बार तो कानून का नियमपूर्वक पालन भी नहीं किया जाता। बहरहाल दोस्तों, बाल श्रम के नतीजे बच्चों के लिए बहुत ही पीड़ादायक होते हैं। बाल मजदूरी में किए जाने वाले उनके शोषण से बच्चों का बचपन तो बिल्कुल खराब हो जाता है। बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो वहीं कई बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा मारपीट के साथ साथ गालियां भी सुनने को मिलती हैं, जिससे बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल चौपट हो जाता है। इस कारण उनके अशिक्षित रह जाने से उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता। जब ऐसे बच्चे शिक्षा से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं तो वे विकास के अवसरों का लाभ उठाने में भी लगभग असमर्थ ही होते हैं और अपना शेष बचा हुआ जीवन बस ऐसे ही श्रमिक के रूप में निकाल देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि बाल श्रम को समाज से खत्म करने के लिए अपनी सरकार का सहयोग करें और अपनी तरफ से भी इस अभिशाप को बढ़ावा न दें। बच्चों को काम से बाहर निकालकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए, शोषित परिवारों को जागरूक करने के लिए सरकारी नीतियों का साथ देने की जरूरत है। क्योंकि अपने देश में लगभग 70% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, इसको देखते हुए ग्राम पंचायत बाल श्रम को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। एक व्यक्तिगत स्तर पर भी बाल श्रम रोकने के लिए हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि यह हम सभी का नैतिक दायित्व है। खास तौर पर हमारे देश में बाल श्रम को रोकने के लिए अब एक सामाजिक क्रांति की जरूरत भी महसूस की जा रही है, जिसमें सरकार के साथ समाज का अहम योगदान होना चाहिए। तभी बचपन और युवावस्था का सही तालमेल बैठाने में हम कामयाब हो पाएंगे और दोस्तों, देश के भविष्य को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे आस पड़ोस में बच्चों से काम करवाता है तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो भाई, इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि आप इसकी शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट साहब से कर सकते हैं। आप बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली किसी सामाजिक संस्था की नज़र में भी ये लेके आ सकते हैं, जो इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से आगे तक ले जाएंगे। किसी बड़े पुलिस अधिकारी या बाल मजदूर इंस्पेक्टर से भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को और प्रभावी बनाना होगा। उस वक्त बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना जरूरी है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए माता पिता को जागरूक और शिक्षित करने की भी जरूरत है। बहुत से बच्चे बाल मजदूरी को लेकर बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं। उन्हें सरकार और समाज सुधारकों से कई तरह की उम्मीदें भी हो सकती हैं। दोस्तों, बच्चों का काम स्कूल जाना है, ना कि मजदूरी करना, और बाल मजदूरी बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेती है और वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट है, जिससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी हाजिरी और प्रदर्शन पर भी

खराब असर पड़ता है। साथियों, काम करना और रुपए कमाना बच्चों के सोचने की बात नहीं है। बच्चे तो सोचते हैं कि उनके लिए खाना, पढ़ना, मनोरंजन होना चाहिए। कभी दोस्तों के साथ तो कभी घर में, कभी टीवी देखकर तो कभी गाने सुनकर। तो भाई आइए हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए बच्चों का मनोरंजन करवाते हैं। तो बुला लीजिए आप लोग भी घर के सभी बच्चों को, क्योंकि अब बचने वाला है बच्चों की मासूमियत का बखान करने वाला यह मधुर गीत।

व्यक्ति को जीवन में अनेक झंझावातों, चिंताओं, आशंकाओं, असंतोषों, तनावों, आघातों एवं दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार उसके जीवन में अनेक प्रकार के असुखद एवं कष्टदायी परिस्थितियों के कारण उसके समायोजन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भूकंप, आगजनी, नौकरी छूट जाना, व्यवसाय का खत्म हो जाना, प्रियजनों की मृत्यु कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है। ऐसे भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कारकों को जो तनाव उत्पन्न करते हैं प्रतिबलक कहा जाता है। इन प्रतिबलकों के कारण ही व्यक्ति में एक विशेष मानसिक दशा पाई जाती है जिससे व्यक्ति निरंतर एक खिंचाव से पीड़ित रहता है तथा वह उससे यथाशीघ्र मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब वह अपने आप को व्यावहारिक रूप में ऐसा कर पाने में असमर्थ पाता है तो वह किसी भावी संकट से निरंतर आशंकित ही नहीं रहता वरन भयभीत भी रहता है। स्ट्रेस के अधिक तीव्र होने पर उसकी कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस जैविक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति किसी विशेष दायित्व के अत्यधिक भार से दब जाता है अथवा किसी अंतः वैयक्तिक संघर्ष में फंस जाता है तो उसमें उत्पन्न स्ट्रेस का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। इसी प्रकार जैविक स्ट्रेस की उत्पत्ति उन परिस्थितियों में अधिक होती है जब वह अत्यधिक थका हुआ होता है, उसमें दीर्घकालिक अस्वस्थता पाई जाती है अथवा गहरे नशे का शिकार होता है। स्ट्रेस का घनिष्ठ संबंध अंतर्द्वंद्व, कुंठा तथा अभाव से है। जब व्यक्ति दो लक्ष्यों के मध्य उनके चयन की दिशा को निर्धारित नहीं कर पाता है तो इस असमर्थता के कारण दबाव अनुभव करता है और उसमें द्वंद्व की स्थिति पाई जाती है। द्वंद्वात्मक स्थिति की मात्रा जितनी ही अधिक होगी दबाव भी उतना ही अधिक होगा। दबाव की अधिकता व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्षों को प्रभावित करती है। तनाव का कारण चाहे जो भी हो यह व्यक्ति के सांवेगिक एवं दैहिक स्वास्थ्य पर खराब असर डालता है, अतः स्ट्रेस को कम किया जाना आवश्यक है। स्ट्रेस को कम करने से संबंधित व्यवहार को समायोजी व्यवहार अर्थात कोपिंग बिहेवियर कहा जाता है। सैली ने स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव दिया है। उत्पन्न हुए तनाव को कम करना चाहिए एवं बाहर निकालना चाहिए। जल्दीबाजी में कार्य न करें, गुस्से को ठंडा होने दें। आलोचना के सकारात्मक पहलू के बारे में सोचें। सीधे सीधे आलोचना न करें, विनम्रता से बोलें। तनाव का उपयुक्त प्रबंधन करना चाहिए। विभिन्नताओं का प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक काम का बोझ नहीं होना चाहिए। अपने संवेगों को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक समय का बोझ नहीं होना चाहिए। मानसिक तनावों को कम करने के लिए योग क्रिया अपनानी चाहिए। प्राणायाम, व्यायाम, विभिन्न प्रकार के आसन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां तक संभव हो अपनी समस्याओं को बढ़ाना नहीं चाहिए वरन कम करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सूचना का बोझ भी नहीं होना चाहिए। रात्रि को सोते समय दिन की समस्याओं पर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्राम करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जरूरतों का बोझ नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें दूसरों से स्वस्थ संबंध विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बीमारियों का बोझ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीने की कला में इस दर्शन को आत्मसात कर लेना चाहिए, जो था सो था, जो है सो है, जो होगा सो होगा।
जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्ति दिन प्रतिदिन की जिंदगी में होने वाले तनावों को दूर करने के लिए

0: कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं आपका रेडियो दोस्त खालिद तनवीर। साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का तनाव यानी टेंशन हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी इंसान जब ज़्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव में होता है तो उसका शरीर महसूस करता है कि वो खतरे में है। हर इंसान के लिए तनाव यानी प्रतिबल का प्रबंधन अच्छा जीवन जीने और स्वास्थ्य पर गलत प्रभावों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति लगातार तनाव, चिंता या दबाव की स्थिति में अपने कामों को करते रहने की कोशिश करता है तो उसे परेशानी होती ही है। आइए आज डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल की वार्ता के माध्यम से इस प्रबंधन के विषय में अधिक जानकारी हासिल करते हैं। वार्ता का विषय है प्रतिबल प्रबंधन।
1: प्रतिबल और उसका प्रबंधन। स्ट्रेस आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या है। जीवन एक सीधी निर्बाध सीधी रेखा के समान नहीं है। जन्म से ही

0: तरह तरह के उपायों को अपनाता है, परंतु ऐसे उपाय कई कारणों से हमेशा कारगर साबित नहीं हो पाते। इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण प्रतिबल या तनाव की गंभीरता है या उसकी नवीनता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ प्रविधियां बतलाई हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से अभिप्राय ऐसे कार्यक्रम से है जिसमें लोगों को तनाव के स्रोतों से अवगत कराते हुए उनसे निपटने के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों के बारे में शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कार्यक्रम में तनाव को कम करने के कौशलों का अभ्यास भी कराया जाता है। अमेरिका में एक अति महत्वपूर्ण तनाव प्रबंधन कार्यक्रम विकसित किया गया है जिसे कॉम्बैट स्ट्रेस नाउ कहा जाता है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक उन कॉलेज छात्रों के लिए किया गया जो शैक्षिक जीवन के तनावों से निपटने में कठिनाई अनुभव करते थे। तनाव प्रबंधन की एक प्रविधि में व्यक्ति को मांसपेशियों के शिथिलीकरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। डेविसन और थॉमसन ने 1988 में किए अध्ययनों के आधार पर बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण का यदि व्यक्ति शिथिलीकरण का अभ्यास लगातार करता है तो स्थायी लाभ मिलता है। दूसरी प्रविधि वह है जिसमें व्यक्ति के विश्वास तंत्रों में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है ताकि वह अपनी जिंदगी की अनुभूतियों की एक उचित एवं सही व्याख्या प्रस्तुत कर सके एवं अपने संवेगों एवं स्पष्ट व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सके। एलिस तथा बैक का मत है कि तनावग्रस्त अनुभूतियों के उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति में असंगत विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विश्वास के कारण व्यक्ति दूसरों से और यहाँ तक कि स्वयं से अधिक अपेक्षाएं करने लगता है और तनावग्रस्त हो जाता है। इस प्रविधि में ऐसे विश्वासों को दूर करके उनके स्थान पर तर्कसंगत विश्वास उत्पन्न किए जाते हैं जिससे वे अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी से तनाव को दूर रखने में समर्थ हो सकें। तीसरी प्रविधि वह है जिसमें व्यक्ति को कुछ व्यवहारों से संबंधित कुछ ऐसे कौशलों को सिखलाया जाता है जिनका उपयोग करके वह अपने तनाव को दूर कर सकता है या कम कर सकता है। समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा ही कौशल है जिसे सीखकर व्यक्ति दिन प्रतिदिन की जिंदगी के तनाव को कम कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति को कम समय में जरूरत से ज्यादा काम कभी कभी करना होता है जो स्पष्टतः तनाव का कारण होता है। समय प्रबंधन में व्यक्ति को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटेगा। एक अन्य प्रविधि में वातावरण को ही एक समस्या मानकर तथा उसमें परिवर्तन करके तनाव को कम करने का कौशल सिखाया जाता है। इस कौशल से वह अपने सामाजिक समर्थन के स्तर को मजबूत करके अपने इर्द गिर्द के वातावरण को इस तरह से परिवर्तित कर देता है कि उसे तनाव न के बराबर होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिबल प्रबंधन की प्रविधियों का संयुक्त रूप से उपयोग करके व्यक्ति तनाव मुक्त जिंदगी व्यतीत कर सकता है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे आज की वार्ता, विषय था प्रतिबल प्रबंधन। वार्ताकार थी डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल। और अब लेते हैं एक अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
4: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
3: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ज्ञान सागर का, जिसमें आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कभी बंबई का शेर कहा जाता था। जी हाँ श्रोताओं, बात कर रहे हैं आज यानी 4 अगस्त को जन्मे महान देशभक्त, राजनेता और वकील फिरोज शाह मेहता की, जिन्हें न केवल बंबई का शेर कहा जाता था बल्कि उन्हें बॉम्बे नगर पालिका का पिता भी कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट 1872 का मसौदा तैयार करने के लिए उन्हें ही जाना जाता है। और बात करें नेतृत्व की, तो वे 4 बार बॉम्बे म्यूनिसिपलिटी के अध्यक्ष रहे और 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक दिनों में राजनीतिक त्रिमूर्ति में बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग के साथ शामिल रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी बने। ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सन 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल नामक एक अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत भी की, जो अपने समय की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आवाज और स्वतंत्रता पूर्व भारत की राजनीतिक उथल पुथल का एक महत्वपूर्ण पत्र बन गया। सर फिरोज शाह मेहता का कार्यकाल देश के आर्थिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को भी व्यक्त करता है। भारतीय संसद भवन में फिरोज शाह मेहता का चित्र राष्ट्र निर्माण में उनके महत्व को दर्शाता है। उन्हें बंबई का शेर और बंबई का अघोषित राजा कहा जाता था। मुंबई में आज भी श्री मेहता का बहुत सम्मान किया जाता है। उनके नाम पर सड़कें, हॉल, पार्क और विधि महाविद्यालय हैं। उन्हें उस दौर के युवा भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत, भारत के बार काउंसिल और कानूनी पेशे के नेतृत्व और राजनीतिक गतिविधियों में भारतीय भागीदारी की नींव रखने के अलावा भारत के लोगों को स्वशासन देने और संघर्ष के लिए प्रेरणा माना जाता है। और अब कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। श्रमिक श्रोताओं से पूछा गया था आज का सवाल, विश्व की कुछ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली भारत की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? और दोस्तों, इसका सही जवाब है अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका सबसे ऊंचा शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू में गुरु शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। और अब बातें कुछ सेहत टिप्स की। दोस्तों, हमारे श्रोताओं के लिए हम लाए हैं तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के कुछ आसान तरीके। रोजाना ताजे फल, हरी सब्जियां खाएं, दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं, खाने में चीनी, नमक और तले हुए भुने हुए भोजन या फास्ट फूड का सेवन ना करें, बाहर की चीजें खाना बिल्कुल कम ही कर दें, जो भी चीज पसंद हो वो घर में ही बनवा करके खाएं, सुबह का नाश्ता जरूर करें, यह दोपहर के भोजन तक आपको ऊर्जावान रखता है। अपने शरीर और दिमाग के लिए रोज 7-9 घंटे की गहरी नींद भी लें, हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलें या फिर योग करें। और साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं यह मधुर गीत। बरसात का मौसम है तो आप भी इस गीत के साथ बरसात का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित

निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: said that India maintained more than adequate fuel stocks and ensured 100% availability of household liquefied petroleum gas and liquefied natural gas during the period. In a social media post, Mr. Puri informed that he chaired a meeting of the consultative committee of the Ministry of Petroleum and Natural Gas in New Delhi. The union minister added that during the meeting he briefed the members on the measures taken by the government to safeguard the country's energy needs. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said that the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see through Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
1: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured, as you have seen. The Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
0: On media interaction by former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, the spokesperson said the interaction is being organized by a private media entity. He said the government has no involvement in it and neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today, snapping a four-day gaining streak. The Sensex shed 210 points to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points to settle at 24,615. And in badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garaga and Pruthvi Krishnamurthy Roy upset 6-seed Thailand pair to enter the men's doubles second round at the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea today. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर गिरिराज किशोर की वार्ता, जिसका विषय है बच्चों पर मत थोपिए अपनी महत्वाकांक्षाएं।
3: रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिशु एक कलिका के समान है जिसका विकास स्वयं होता है, अर्थात पुष्प कली को मानव प्रयास करके पुष्प नहीं बना सकता। यदि वह प्रयास करेगा तो पुष्प की कलियां बिखर जाएंगी और वह कली पुष्प बनने से पूर्व ही नष्ट हो जाएगी। यह एक सामान्य अनुभव है कि परिवार में जन्म लेते ही बालक पर माता पिता व अन्य सदस्य अपने अपने विचार बालक के मन में संप्रेषित करने लगते हैं। इन विचारों से बालक उसी प्रकार कुमला जाता है जैसे ओले पड़ने से नन्हे नन्हे पौधे दब जाते हैं। निश्चय ही बालक एक पौधे के समान होते हैं और उपयुक्त देखभाल व स्नेहपूर्ण सिंचन से उनका विकास स्वाभाविक व सर्वांगीण होता है। बड़े होते बच्चों पर अपनी रुचियां थोपने के बजाय उसके रुझान रुचियों को जानकर अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने से बच्चा खेल उठता है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि बालक के विकास की तीन मुख्य अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं जिनको जानना पेरेंट्स को जरूरी है। विकास की विशेषताओं की जानकारी व विशेष देखभाल से बालक का व्यक्तित्व निखर निखर उठता है और उसके विकास की नौका मुख्य धारा में अविरल गतिमान होती रहती है। एक प्रसिद्ध कथन है, शिशु मनुष्य का पिता होता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जिसका अर्थ यही है कि शैशव काल में विकास भावी जीवन के प्रतिरूप का प्रतिबिंब होता है। आम भाषा में पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते।

हैं, अर्थात हमको बालक को देखना है, वह जानना है कि उसकी हर आयु में क्या रुचियां, प्रवृत्तियां व क्षमताएं होती हैं। यह जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शैशव अवस्था जीवन का आधार है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशव अवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है कि शिशु गंदा रहता है, जमीन पर लेटता है, कपड़ों का ध्यान नहीं रखता, इसलिए इस आयु को डर्टी एज या गंदी आयु कहते हैं। इसलिए हमें स्वच्छता की अपनी बात उस पर थोपनी नहीं चाहिए। कभी कभी वह मिट्टी खा लेता है, साबुन या दीवार चाट लेता है। इन बातों को हमें शिशु की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानकर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें विकास के साथ लुप्त होती जाती हैं। शिशु के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। बोलना, खाना, पीना, कपड़े पहनना आदि अनेक कार्य वह अपने माता पिता व अन्य बड़े सदस्यों को देखकर सीख लेता है। अतः हमें बच्चे के सम्मुख सभी कार्य श्रेष्ठता से करने चाहिए तथा सही शब्दों व भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में बालक मिठाई, टॉफी, आइसक्रीम आदि को देखकर रुक नहीं पाते, अतः डांटने के स्थान पर उसे यथासंभव सीमा में इन खाद्य पदार्थों को दे देना चाहिए। रूसो ने कहा है, बच्चे के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, अतः उसे क्रिया करने और देखने का पूर्ण अवसर दें। बच्चा जिज्ञासु होता है, उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। बच्चा कहानी व कविता सुनना व सुनाना चाहता है, इसलिए उसे अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। खेल बच्चे के जीवन का टॉनिक है, उसे खेलने देना चाहिए। खूब खिलौने दें तथा उन्हें खोलने, जोड़ने, यहाँ तक तोड़ने की भी स्वतंत्रता दें। बाल्यावस्था समूह में रहने की आयु है। बच्चा अपने साथियों के साथ रहने व खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। यह आयु स्फूर्ति की आयु है। बच्चों को उन पर फबने वाले कपड़े दिलवाने चाहिए, जिससे वे स्मार्ट लगें। बच्चों को पिकनिक पर ले जाएं और परिवार के सदस्य उनके साथ खेलें और बच्चों को प्रफुल्लित होते देखें। बाल्यावस्था में बच्चे क्यों के प्रश्न पूछने लगते हैं, अतः बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजक पुस्तकें देना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति प्रबल होती है, अतः उन्हें ड्राइंग, क्राफ्ट, लकड़ी, मिट्टी आदि से तरह तरह के घर, वस्तुएं, फल, जानवर आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सृजन का क्या आनंद होता है, इसे हम बच्चों के रचनात्मक कार्य में देखते हैं। अतः इस अवस्था में पाठ्यक्रम क्राफ्ट सेंटर होना चाहिए। 12 वर्ष के पश्चात बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील अवस्था है, जिसकी विशेषताओं को जानना माता पिता, अभिभावकों व शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। सर्वप्रथम किशोर अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है। किशोर किशोरियों में परिपक्वता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और वे अधिक क्रियाशील व साहसिक हो जाते हैं। अतः शिक्षकों व अभिभावकों को उनकी अतिरिक्त ऊर्जा के संवहन हेतु क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, पर्वतारोहण, विद्यालय में वृक्षारोपण व देखभाल आदि। किशोरावस्था पढ़ने की आयु होती है, अतः शिक्षकों व अभिभावकों को इस अवस्था में लड़के लड़कियों को महापुरुषों की आत्मकथा, साहसिक यात्राओं का वर्णन, विभिन्न देशों के विवरण संबंधी विविध प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनकी नायक अनुकरण प्रवृत्ति, पर्यटन की इच्छा आदि पूर्ण हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय से सर्वाधिक पुस्तक पढ़ने वाले को पुरस्कृत करना चाहिए। इस प्रकार पढ़ने की आदत से लड़के लड़कियों की रुचियां परिष्कृत होती हैं और उनका व्यक्तित्व जिज्ञासा की पूर्ति से खिल उठता है। किशोरावस्था में पर्यटन की प्रवृत्ति तीव्र होती है, अतः विद्यालय में विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए अवश्य ले जाना चाहिए। माता पिता,
अभिभावक भी ग्रीष्म अवकाश या अन्य अवकाश में प्राकृतिक या ऐतिहासिक

0: स्थलों के भ्रमण के लिए अवश्य ले जाएं। 14 से 18 वर्ष की अवस्था जीवन निर्माण की अवस्था है, अतः बच्चों के स्वभाव व रुचियों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का विकास करना प्रभावशाली है और उन पर अपनी रुचियां महत्वाकांक्षा थोपना अब मनोवैज्ञानिक है।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था बच्चों पर मत थोपिए अपनी महत्वाकांक्षाएं। वार्ताकार थे डॉक्टर गिरिराज किशोर। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कहाँ है?
4: जॉब पर हूँ।
3: बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
5: ऑफिस में?
3: मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है।
5: अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
5: भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा।
3: मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ।
6: योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए

0: हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399 करोड़ 50 लाख रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620 करोड़ 4 लाख रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107 करोड़ 88 लाख रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942 करोड़ 73 लाख रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022 करोड़ 27 लाख रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
2: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हों उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।
3: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
1: ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभु कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉक्टर लोकेश एम को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि सारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।
1: ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट।
2: बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर आते कांवड़िए बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530

किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जो जय हिंद।
1: ओम भैया,
0: हाँ
1: देखो सावन के महीना चल रहा है और चारों ओरी बरखा हो रही है। और ये बरखा के मौसम में आपन फसल जब हम देखा था ना, हरियर बरियर, तो एकदम मन झूम उठा था।
0: बिल्कुल काहे ने झूमे सरला बहनी, देखो इतनी मेहनत की जात है और जब अपन मेहनत रंग लावत है तो वो बड़ा निक लागत है।
1: बहुत निक लागत भैया। और बरखा मौसम चल रहा है, वही के साथ ही हम सबका यू बात का ध्यान रखना चाहिए, अपन खेती के साथ ही अपन हरहा गोरू।
0: हाँ अपने हरहा गोरुन का जरूर ध्यान रखक है। काहे तरह जब देखो बरखा मौसम होते है तो बहुत तरह की जो संक्रामक बीमारी है वे अपने हरहा गोरुन का घेर लेते हैं।
1: और अपन हरा गुरु भैया जो संक्रामक बीमारी चपेट में आ जाती है ना, यही के लिए हम सबका समय पे टीकाकरण करवा ली।
0: काहे तरह जब पहले तरह हम पंचे टीकाकरण कराए लेबे तो जो इस समय बहुत तरह की बीमारी आती, खुरपका मुंहपका और यहाँ तक कहते हैं कि जो बांझपन है वह नहीं होते।
1: ओम भैया, कहा मतलब कि टीकाकरण से पशु के शरीर में जो रोग से लड़े क्षमता होता है ना, वो विकसित हो जाए।
0: तो अपन जो नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय है हुमा जाए के अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए सकत हो।
1: और ओम भैया, टीकाकरण की बात करो ना, तो टीकाकरण जो है सरकार द्वारा एकदम निशुल्क लगावा जाए।
0: हाँ तो ये चीजन का बड़ी आसानी थे अपनाए कहिया भैया अपने हरहा गोरुन के या अपनी खेती कहिया और अपने आप कहिया जो उन जेब पर खर्चा पड़े वाला है वही तो सुरक्षित भैया कर सकत हो।
1: तो इन चीज का हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अपन पशु का टीकाकरण जरूर करवा ले, गंभीर रोग से बचावे का है। और अगर गंभीर रोग से बची हैं भैया अपन हरा गुरु अपने साथ रही हैं, तो अपन खेती बहुत बेहतर तरीके से हो सके।
0: हाँ और सरला बहनी देखो जब हम बंजन का आज की खबर पता चल जाते है तो कितना नीक हो जाते।
1: काहे न भैया, अगर पहले से खबर पता चल जाता ना, तो वही के अनुसार हम सब चला थन।
0: तो सरला बहनी आज की खबर जाना जाए।
1: बिल्कुल जाना जाए भैया।
2: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रीकरण को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 3,300 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन मांगे गए थे। जिन जिलों में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं वहां किसानों का चयन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा और अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक मशीनों का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मशीनों के उपयोग से खेती में समय की बचत होती है, श्रम लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
0: सरला बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो ये ब्यारा तना तना की हरी हरी सब्जी जैसे देखो बाजार में यहाँ भैया दिखा रहे हैं अपने ख्यातों पाद में बहुत है।
1: कायन भैया, देखो हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के फल जब अपने खेत में दिखात है। और तमाम तरह की सब्जी है इस समय, लौकी है, कद्दू है, तुरई है, और जब हरी सब्जी अपने थाली में आवत है ना, तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
0: लेकिन सरला बहनी है का देखो ये ब्यारा जो अपन ख्यात में सब्जी है वह देखन तो बड़ी नीक लागत है, खाए बड़ी नीक लागत है, लेकिन जो हम पंचे वही का तैयार करी थन तो वही में बहुत तना के जो है कीट पतंगा रोग दोग बहुत लागत है।
1: ओम भैया, यही के लिए हम सबका पहले से सचेत रहने की जरूरत है, अपने खेत की निगरानी करने की जरूरत है, ताकि अपने जो फसल है और सब्जी है उनका हम कीट से बचा सके।
0: हाँ तो आज अपने साथ देखो रिंकी कुमारी चौहान बहनी जुड़ चुकी है और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बता रही, तो आओ जाना जाए।
1: जाना जाए भैया, और अपन पंच भैया भी जाने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ सब्जियों का

0: व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे हानिकारक कीट बीमारियां लगती हैं, उनका प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक पौध रक्षा डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय खरीफ की ढेर सारी सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, कंद वर्गीय सब्जियां हैं और टमाटर, मिर्च और बैगन भी है, तो इनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो कैसे?
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, अभी देखिए खरीफ का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हैं और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कीट रोग है उसका भी प्रमाण बहुत है। रस चूसक कीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, जैसे एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इन सभी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाइयों से हमें इसका प्रबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि

0: सा कीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, जैसे एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इन सभी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाइयों से हमें इसका प्रबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से कीट में जो है प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसी वजह से जब हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 साल के बाद वो रसायन जो है उस कीट के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेम केमिकल इस्तेमाल होने से प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित हो जाती है हानिकारक कीटों में। इसीलिए और इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कीट है, जैसे कि हम देखेंगे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, तो इस तरह के जो मित्र कीट है उसका भी नुकसान होता है, वो भी हमारे खेत में से खत्म होते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें व्यवहारिक नियंत्रण हो गया, यांत्रिक नियंत्रण हो गया, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है या जो आर्थिक हानि स्तर से अगर कीट का जो स्तर है वो अगर ऊपर है, नहीं प्रबंधन हो रहा है, तभी और तभी हमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: और वो भी सुरक्षित,
0: वो भी सुरक्षित। जितना हम जानते हैं कि CIBRC है या फिर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है कि इतनी ये दवा इतनी मात्रा में ही और इतने पानी में इतना जो रसायन है वो मिलाकर जो घोल बनाकर वो स्प्रे करना चाहिए उतनी ही मात्रा में, कभी भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसमें ढेर सारी सब्जियों की नर्सरी है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, खरीफ प्याज है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो नर्सरी में कीट रोग का प्रबंधन कैसे हो?
0: देखिए, नर्सरी की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि अगर नर्सरी की ही अवस्था से हम लोग रोग या कीट का प्रबंधन कर लेंगे तो आगे जाके हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कीट और रोग हैं वो कम लगेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नर्सरी जो है जिसमें आद्र गलन रोग लगता है तो उससे, और जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छे से पानी का जो निकाल है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना चाहिए हमेशा नर्सरी के लिए। उसके बाद जो सौरीकरण, वो भी भूमि का बहुत ज्यादा जरूरी है, यह हमें सौरीकरण जो मई जून के महीने में जब तेज धूप होती है तब करना चाहिए। उस समय हमें जो पॉलीथीन सीट होती है 45 गेज की, उसे मिट्टी के ऊपर करके फिर सौरीकरण किया जाता है, जिससे कि ज्यादा गर्मी की वजह से जो भूमि के नीचे कीट हैं या रोगवाहक जो स्पोर हैं, अंडे हैं, वो सब मर जाते हैं इस वजह से। उसके बाद हमें भूमि शोधन भी करना चाहिए। भूमि शोधन हो गया कि जो 3 किलोग्राम जो घूरे की खाद होती है हम जानते हैं, उसके अंदर 250 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा जो हमारी जैविक मित्र फफूंद है उसे मिलाकर थोड़े दिन तक रख देना चाहिए छाए में, और उसके अंदर पानी छिड़क कर अगर हम नमी बनाए रखते हैं फिर 21 दिनों के पश्चात हमें अपनी क्यारी में 3 वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए।
1: ये कितने क्षेत्रफल के लिए?
0: ये सिर्फ 3 वर्ग मीटर के लिए।
1: अच्छा।
0: 3 वर्ग मीटर की जो क्यारी होती है सिर्फ इसकी मात्रा है।
1: उसमें 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 3 किलो गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट में,
0: हाँ, उसमें मिलाकर रख देना चाहिए। उसके बाद जो नमी बनाए रखना, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कि नमी रहे। उसके बाद ये जो मित्र फफूंद है वो इसमें बढ़ जाती है, फिर उसे हम जो हमारी क्यारी है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीज शोधन, अगर बीज शोधन ही हम कर दे तो वो जो आगे हमारी मुख्य फसल है उसमें रोग बहुत ही स्तर से कम हो जाता है। तो जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी 4 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज शोधन हमें जरूर करना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे हम प्रतिरोधी क्षमता, किसी भी अगर बैंगन की प्रतिरोधी क्षमता की प्रजाति है या फिर टमाटर की जो प्रजाति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है कीट और रोग के लिए, तो वैसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रस चूसक कीट है उनके लिए भी बीज शोधन होता है, तो उसके लिए भी हमें इमिडाक्लोप्रिड 70WS का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना चाहिए।
1: यानी नर्सरी में ये, हाँ, काम पहले ही हो जाए,
0: हाँ, पहले ही
1: बीज शोधन में। डॉक्टर साहब, जहाँ रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन नर्सरी की, तो पौध जड़ उपचार भी तो जरूरी है।
0: हाँ, पौध जड़ उपचार भी हमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से कर देना चाहिए 5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से। उसके बाद देखिए, हमें जब हम मुख्य फसल लगा दे रहे हैं तो साथ ही साथ जो परभक्षी पंछी है उसे भी एक बर्ड स्टेचिस हमें लगाना चाहिए, जिससे कि जो पंछी है हमारी फसलों में जो भी इल्लियां हैं उसे चुन चुन कर फिर वो खाती रहती हैं।
1: यानी बर्ड पर्चर,
0: हाँ,
1: लगाएं,
0: बर्ड
1: टी
0: पर्चर हमेशा टी आकार का लगाने चाहिए, जिसके ऊपर बैठकर पंछी आराम से फिर वो कीट जो है ढूंढ के खा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी मुख्य फसल है उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप खूब ज्यादा मिलता है,
1: तो अक्सर बरसात,
0: अक्सर बरसात में तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा भी होता है। तो रस चूसक कीट जैसे एफिड जैसिड हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले

0: में जो नीला या पीला चिपचिपा फंदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
1: यानी फेरोमोन ट्रैप,
0: फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, ये जो रस चूसक कीट है उनके लिए नीले चिपचिपे या पीले चिपचिपे फंदे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि यह रस चूसक कीट आकर्षित होकर उसमें चिटक जाते हैं और फिर वो उड़ नहीं पाते हैं। इस तरह से इसका प्रबंधन होता है। इसके सिवाय जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम से बनता है,
1: यानी नीम कौड़ी का सस्त,
0: हाँ, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो जैसा कि हम जानते हैं नीम हमेशा कड़वा होता है, तो ये भी है जो रस चूसक कीट है उनके बढ़ावा को कम करता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सफेद मक्खी हो गई या रस चूसक कीट का जो आर्थिक हानि स्तर ऊपर जा रहा है, तब हमें जो फेनप्रोपेथ्रिन 30 EC नामक दवा है उसका 5 से 7 मिली प्रति 15 लीटर वाली टंकी के दर से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए।
1: या कोई दूसरी दवा?
0: दूसरी दवा भी है, जैसे कि स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC है, इसका भी 12 मिली प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर पानी की दर से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं सुबह या फिर शाम को जब समय हो। निगरानी बहुत ही जरूरी है, तभी और तभी हमें कीट का पता चल जाता है। और सबसे अच्छा जब हम निगरानी करते हैं तो गंध पास हमें खेत में जरूर लगाना चाहिए। तो जो ल्यूसिनोड्स ऑर्बनलिस का ये गंध पास होता है बैंगन के लिए, तो वो हमें 3 से 4 प्रति एकड़ शुरुआती अवस्था में सिर्फ निगरानी के लिए लगाना चाहिए। अगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नुकसान या जो पतंगे हैं इसके अंदर आकर्षित होके आ रही है, तो उसके बाद हमें जो प्रबंधन करने के लिए 30 से 40 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9924876728 99247667 28 99247667 28।
1: डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान, आज आप कार्यक्रम में आई और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सल्ला भाई ने देखो, जब इतनी नीक बतकही सुनवाए दिन हो है, तो हम देख रहे हैं कि आप मुस्काया रहे हो बहुत ज्यादा है।
3: काहे न भैया, देखो सावन का महीना है और झूला पड़े हैं, सब बहने अपने मायके में आए के झूला झूल रहे हैं, तो हमारा मन कहा था भैया कि कजरी उजरी सुन लेन जाए।
2: बिल्कुल, अपने पंचो बहन देखो कजरी सुनवाओ बहनी।
3: मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में कजरी तो सुना जाए और पंचो भैया भी सुने आनंद लें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सरला बहनी,
7: हाँ भैया,
6: अपने बीच का किसान भाई देखो कितनी मेहनत करते हैं और तना तना के नवाचार अपनी खेती में अपनावत हैं।
7: ओम भैया, जो किसान होते ना, हम सब अपन खेती करत हैं, मुला की कुछ ऐसे किसान होते हैं जो नई तकनीकी अपना रहे हैं तो वे सबसे अलग हो जाते हैं और ऐसे सफल किसान भी रहते हैं।
6: तो देखो आज के किसान जो है अचल कुमार मिश्र भैया अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो आओ सुना जाए।
8: आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के बिजुआ ब्लॉक के मेड़ईपुरवा गांव से गन्ना उत्पादन से जुड़े अचल कुमार मिश्र भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप कृषि में विविधीकरण और खास करके मिठास फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय रकबा कितना है आपका गन्ने का?
9: नमस्कार, इसमें लगभग हमारे पास तो 20 एकड़ जमीन का रकबा मैंने गन्ना बो रखा है।
8: हाँ,
9: और संयुक्त रूप से हम ज्वाइंट फैमिली में खेती करते हैं।
8: तो जो 20 एकड़ है, कुछ शरदकालीन होगा कुछ बसंतकालीन होगा?
9: जी, कुछ शरदकालीन है और बसंतकालीन है, लेकिन ज्यादा रकबा जो हमारे पास है वो शरदकालीन गन्ने का है।
8: लगभग कितना?
9: लगभग 5 हेक्टेयर, 12.5 एकड़।
8: 12.5 एकड़ शरदकालीन गन्ना है
9: जी,
8: और लगभग 7.5 एकड़ आपका बसंतकालीन गन्ना है
9: जी।
8: कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
9: इसमें जो नवीन प्रजातियों में है वो COLK 16202, COS 18231 और 14234 सामान्य प्रजाति का गन्ना है। साथ ही जो अर्ली में बहुत प्रमुख वैरायटी रही जिसकी गुड़ बहुत अच्छी बनती है, COJ 85 जो बहुत पुराना गन्ना है वो भी हमारे पास है।
8: तो इसमें फसल कैसी चल रही है?
9: फसल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पिछले वर्षों हमारे यहाँ लगातार तराई में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए गन्ने के लिए हमारा जिला पहचाना जाता है। इस वर्ष बारिश थोड़ी कम है।
8: तो उसका असर क्या गन्ने की फसल पर है?
9: जी, उसका असर लगातार अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लगता है आने वाले दिनों में अगर बरसात कम होती है तो हम लोगों का उत्पादन घट सकता है।
8: लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है।
9: जी, अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन पिछले वर्षों में लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ मानसून आ जाता था। अब की मानसून की बरसात बारिश जो है लगभग 20 दिन लेट हुई है, इससे जो है काफी अधिक फसलें प्रभावित हुई हैं।
8: तो आप जीवन रक्षक सिंचाई करते रहे होंगे गन्ना में?
9: जी, लगभग हमारे पास विद्युत संचालित नलकूप हैं, उससे हम लगातार जो है सिंचाई करते रहे हैं।
8: इस समय हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं?
9: देखिए, पहली बरसात में सबसे ज्यादा समस्या जो है किसानों के सामने वो पोका बोइंग रोग की आती है।
8: आपके यहाँ है लक्षण?

0: जी, पोका बोइंग के लक्षण जब आते हैं तो गन्ने की ऊपर की जो पत्ती है वो लगभग एक मड़ोड़ सी जाती है, ऊपर से उसमें ऐठा आ जाती है,
1: जी
0: उसको पोका बोइंग रोग कहते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें तो वो बीमारी दूर हो जाती है और गन्ना बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन दे सकता है।
1: तो आपने ऐसा किया अपने गन्ना के खेत
0: जी
1: में?
0: बिल्कुल किया है, और हम जहां भी जा रहे हैं किसानों को सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पोका बोइंग रोग है या पायरिला है, इसके लिए लगातार हम उनको कौन सी इंसेक्टिसाइड उनको डालनी है, कौन सी फंजीसाइड उनको डालनी है, इसके लिए लगातार उनको हम अपनी जो है सुविधा अनुसार उनको जानकारी दे रहे हैं।
1: यानी अपने अनुभव से उनको सलाह दे रहे हैं
0: जी
1: कि जैसा आपने किया है वैसा वो भी करें ताकि उनको भी लाभ मिले।
0: जी जी
1: अचल भैया, चूंकि गन्ना उत्पादन से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो गन्ने की बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारे लिए होता है बीज, क्योंकि देखिए बीज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा बीज है, रोग मुक्त बीज है, तो उसकी बुआई आप करेंगे तो आपको एक तो रोग नहीं प्रभावित करेगा, साथ ही साथ सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करनी है, खेत का समतलीकरण करना है, उसके बाद अच्छे से उसको पलेवा करना है, पलेवा करने के बाद उसकी आखिरी जुताई जब हम बुआई से पहले करेंगे रूटावेटर से, तो उसमें 10 किलो एकड़ के हिसाब से लगभग जिंक सल्फेट देनी है हमको आखिरी जुताई में। साथ ही साथ प्रयास ये करें, अगर हम ग्रीन मेन्योर करते हैं,
1: यानी हरी खाद।
0: हरी खाद करते हैं, जैसे कि ढेंचा है, मूंग है, सनई है, तो हमारी उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाएगी और हमारी फसल अच्छी होगी।
1: खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा।
0: जी, जो हमारा सबसे मेन चीज होती है जमीन के अंदर वो कार्बन होता है, वो कार्बन जो है 10.8 से ऊपर रहना चाहिए। प्रत्येक किसान को इस चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमको लगभग फसल के कटाई के बाद 1 महीना खेत भी छोड़ना है खाली, ताकि खेत खाली रहेगा तो उसकी कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ समय समय पर सड़ी लगभग 3 वर्ष की गोबर खाद का भी प्रयोग करना है, जिससे कि उसका कार्बनिक मैटर बढ़ जाए। अब बुआई में बीज के ऊपर जो है, बीज में आपको हमें सबसे पहले 10 माह का ही बीज लेना है,
1: जी
0: क्योंकि उसमें जो है शकरा की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारा बीज जमाव बहुत अच्छा लेगा। अब बीज को शोधन की बात आती है, शोधन के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक ले सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले सकते हैं, कई सारे कार्बिंडाजिम है, अमीना क्लोरोपिड है, सिफ्रोनिल है, ऐसी कई सारी थाइमेक्सोन
1: थायो
0: सी
1: में
0: एस,
1: थक जाम।
0: जी, ये भी आता है CS30%, कई सारी ऐसे इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक आ गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। या आप जैविक रूप में शोधन करना चाहते हैं तो भी आप शोधन कर सकते हैं,
1: ट्राइकोडर्मा,
0: ट्राइकोडर्मा से भूमि का शोधन कर सकते हैं, विभिन्न बैक्टीरिया से जो है आप जैव शोधन कर सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 8299-37-9800, 8299-37-9800, 82-99-37-98-00।
1: अपने अनुभव से और मिठास के किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: अच्छे बीज का उपयोग करें और जो मिट्टी जांच अवश्य कराएं, ताकि संतुलित उर्वरक दें, जिस चीज की जरूरत हो वही उर्वरक उसको दिया जाना चाहिए, इससे आपकी लागत घटेगी। और लागत घटाने पर ज्यादा जोर दें, मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ें। खेती में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी है, विज्ञान के बिना अच्छी खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकगण अच्छी प्रजातियां देते हैं, अच्छी हमको कीटनाशक देते हैं, अच्छी फफूंदी नाशक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमको कम लागत में ही अच्छा उत्पादन मिल सके। लगातार वो प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास को जमीन के ऊपर उतारने का काम हमारा है, इस पर किसान भाइयों को ज्यादा जोर देना।
1: अचल कुमार मिश्र भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपने पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे कृषि से जुड़ गए, खास करके मिठास की फसल का उत्पादन आप लगातार कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और साथ में कृषि में विविधीकरण भी कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला बहनी, अपन खेती पाती देखो मौसम पर आधारित रहते हैं, और अगर हम पंचन का मौसम के हाल पहले से पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपन खेती का काम पहले से निपटाए सके थे।
3: बिल्कुल भैया, तो काहे ना मौसम का हाल जान लीन जाए। भारत सरकार

0: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम का हाल यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज यानी 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और कहूँ कहूँ तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और यही साथ कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है।
1: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसी के साथ मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है संसद समीक्षा।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी

सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मीदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके।

सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है, ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक

0: आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एक देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है विधानमंडल समीक्षा हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विधानमंडल समीक्षा।
2: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
3: विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित रही। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में धरना देते हुए नारेबाजी करते रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच 39,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 6.47% है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे सरकार नई विकास परियोजनाओं के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा सकेगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए करीब 2,000

0: करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए लगभग 1094 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। शोर शराबे के बीच नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। सपा सदस्यों को आगाह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो खींचने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मना करने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही बाकी सदस्यों को भी चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस तरह का आचरण करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नेता सदन ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। इस बीच सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आज का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों से अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कार्य कर रही है, जिसका समय समय पर अनेक माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे जनता लाभ उठा सके। सदन में आज प्रश्न पहल शांतिपूर्वक चला। सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न किया। औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करा ले कि ये MOU कराने लायक है या नहीं। शून्य प्रहर में नियम 39 में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग में विनियमितीकरण से वंचित तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण करने के संबंध में सूचना दी, जिस पर उमेश द्विवेदी समेत अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर शासकीय आदेश जारी किया जा चुका है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सदन की जो समिति बनी हुई है, ये मामला उसमें उठाएं और बैठक कर सम्मानजनक रास्ता नियम के दायरे में निकालने का प्रयास करें। सभापति ने ये भी निर्देश दिया कि नेता सदन अगस्त के माह में ही ये बैठक कर ले। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। शून्य प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी

0: शाहनवाज खान शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के SCERT व डायट में कार्यरत प्रवक्ताओं के ग्रेड पे 6,000 रुपए का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस मामले को भी शिक्षा के मामले सुलझाने के लिए नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र।

शिक्षा है जीवन का अमूल्य उपहार, शिक्षित परिवार विकास का आधार। मीडियम वेव 106.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सिंघम से, श्रेया घोषाल और अजय की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय अतुल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर

0: नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जिनको जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित

0: हित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर

0: Jharkhand, Odisha, and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi witnessed rainfall today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir is complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to men's double second round at Korea Masters Tournament in Assam. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुताल्लिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है, ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुताल्लिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हक-खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक बिल का मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज्यादा की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुताल्लिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फर्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस

0: और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी, अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन करके जिनको जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा ने आज तख़सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अरकीन नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशाखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर माँ कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तई ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुताल्लिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखाधही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखाधही मामलात से निपटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नजरसानी की है। नजरसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा ख़ेज़ करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहां अवामी एहतजाज और पाकिस्तान

0: पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिला वजह हलाकती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुत्तला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK के बाग जिले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद POJK में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर JAAC ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए ये बात कही। JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद जिले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाकयात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे POJK में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरिमीन को वापस भारत लाया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराइम में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरिमीन से निमटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इकतसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाज़ेह किया कि साबिका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वजीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरिमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमन व कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेत से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रूपये, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रूपये और कांसी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रूपये नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन कर

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मनोज जी।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
3: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हो गई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम टू के बाद फेम थ्री भी कह सकते थे लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ना ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंडर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अगर थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था जिसमें काफी गाड़ियां बिकी है, इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो टू व्हीलर्स सारे पिकअप हुए और बसेस भी काफी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के बट काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अपने, जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को। तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में।
2: यहाँ पर रोनेन्द्र थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियां विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
3: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम ई-ड्राइव स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले। फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को
2: जी।
3: उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में जो सेप्टेम्बर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना लगा देते कि भाई इसमें अगर हम

0: इतना परसेंट देना है कस्टमर, तो हम भी अपने प्राइस को इतना कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज, क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है, जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए भी यूज करूंगा, चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने भी खुद भी आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
1: जी।
0: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि OEMs ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ अब गाड़ी का बैटरी जो है वो दे उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका, कि कुछ भी वेयर एंड टीयर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती है अच्छा मेरे को मैं ईवी यू नो मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा, मुझे अच्छी नहीं लगी क्या नहीं, तो आपको अशोर्ड बाई बैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली, तो आपको अशोर्ड बाई बैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है आपने 3 साल चला ली, जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे, गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब दे डोंट सी, उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा। तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं इस साल के शुरुआत से।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के, वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल हैं उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
0: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है,
1: जी
0: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर, क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है सेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो, उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का, टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं, छोटे कह लें कि शहर हैं, वहां भी हम थ्री व्हीलर का और टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो Tier 2 हमारे Tier 3 टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर है जो 1 टन के नीचे आते जो छोटा ट्रक जिसको बोलते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी अब एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि आप वी ऑल्सो केयर फॉर एनवायरमेंट, उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर जो थ्री व्हीलर या छोटा फोर व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। उसके बाद आता है फोर व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो करीबन 30,000-32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का।
1: जी
0: तो उसमें से अगर 30-40 हज़ार भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है और पीएमई ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों को होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का अभी कमी है। लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे असम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो,
1: जी
0: आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो, अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च देवी करके जो
1: जी
0: जो
1: जी जी
0: बसेस जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए JBM या टाटा अशोक
1: जी
0: लेलैंड के।
1: जी जी
0: तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है अभी, छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था CNG की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है, और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी पीएम

0: के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस का भी हम लॉन्च करेंगे, और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहाँ पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में।
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी से हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सबके साथ भी गवर्नमेंट टाई अप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं कितनी बार रुकूंगा
1: जी
0: हाईवे
1: जी
0: पे, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं। उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूं तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो, और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा। और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। और ये भी कर दिया, अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी, जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे या मर्सिडीज हो गए, बीएमडब्ल्यू हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप है, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूँ कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहाँ किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में जैसे एनसीआर नोएडा हो गया, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो आरडब्ल्यूज हैं, वो लोग मना कर देते हैं कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है। हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के कि भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, या कभी वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं, बट फिर भी लोगों के माइंड में रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चन करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में, घर के साइड में, तो
1: जी
0: वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है, उनका मकान है, उसके साथ साथ में अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजिली आप अवेल कर सकते हैं।
1: जी
0: स्पेशली टू व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, टू व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग ऑफ बैटरी ऑलरेडी है ही, और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या टू व्हीलर को।
1: जी बहरहाल हमारे सामने क्या
0: जरूर
1: चुनौतियां हैं रोनेंद्र, ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। जैसे किसी में 10-20 हजार रुपए का बस फर्क होगा, जो कि हमारे सीएनजी और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था,
1: जी
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है, जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना एसी चला रहे हो, कितने स्पीड में चला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहोगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाए, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक, 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे, एसी ऑन होगा आपका, तो ये होता था कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवे में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतनी बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से, मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे, 350, एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके, आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 350 किलोमीटर कवर करना है तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं, ईवी क्रांति हो चुकी है, आप इसके सहयात्री कब बनेंगे ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोने

0: इंद्र सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: मंथन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को कर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
4: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10:11 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से, लता मंगेशकर और उदित नारायण और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0908-210-2621-2 BPL. अरे 9820026235 Max Touch. छे यार, जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार.

लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कुली नंबर वन से चंद्रा दीक्षित और अभिजीत की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, फिल्म कुली नंबर वन के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं धमार गायन रागपाल कौस में। आज के कलाकार हैं इरा मुखर्जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धमार गायन राग मालकौंस में, कलाकार थी इरा मुखर्जी। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026

0: 2020 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOC का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2000.